हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे बहुत सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

जिन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

कहते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होता हो तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोता होता बढ़ते न कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदे।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है,
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918170191। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे की मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देखिए क्या हो गया।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ,
1: नई पुरानी का।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लटक ही रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना। वो नील अंग सा रूप रंग ले, सगल समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन मदंग, और

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है,
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
3: सिंपल में तो फिर,
1: अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
4: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
4: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
4: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
5: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: कैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देखिए क्या हो गया।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के 9 बज गए हैं और स्टूडियो में आ गई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कार्यक्रम के साथ जुड़े सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आज की सुबह की शुरुआत आपकी हो चुकी होगी। श्रोताओं, आपकी सुबह को और हसीन बनाने के लिए और ही अच्छा बनाने के लिए हम कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर रोज़ाना हाजिर हो जाते हैं और इस कार्यक्रम में आप रोज़ाना सुनते हैं अलग अलग आवाज़ों में अलग अलग रेडियो दोस्तों के साथ ये कार्यक्रम किस तरह से चलता है। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आपके साथ साझा कर रही है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे बहुत ही प्यारी लाइनों के साथ। अंधेरों की साजिशें रोज़ रोज़ होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। बिल्कुल, और आज फिर से एक नया उजाला, एक नई सुबह हमारी ज़िंदगी में आ गई है। इस सुबह को हमने किस तरह से जीना है, किस तरह से इस दिन को आज हमने बिताना है और कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह से अपने आप को तनाव से दूर रखना है और क्या अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना है, उसके लिए हमें भगवान ने दिया है एक और मौका, एक और दिन। तो इस दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी बहुत सारी बातें, पर फिलहाल के लिए बातों से पहले ले लेते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की इस प्यारे से गीत के साथ।

किशोर कुमार की प्यारी आवाज़ में आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और हम भी यही कामना करते हैं कि आप सभी के दिल को चैन ज़रूर मिले। श्रोताओं, आप सभी को बता दें कि आप सभी ने 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ट्यून किया है, और इस समय कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। साथ ही आपको बता दें, आप इस कार्यक्रम को 88.4 MHz पर हमीरपुर के धतवाल की आवाज़ पर भी सुन सकते हैं, और इस समय सुन भी रहे हैं। तो हमीरपुर के जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक होंगे और हमारे साथ जुड़े होंगे। आपका प्यार ही है जो हमें खींच कर ले आता है स्टूडियो और आपके साथ जुड़े रखता है। श्रोताओं, आपका प्यार इसी तरह से हमारे साथ बना रहे, यही कामना हम करते हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे मौसम की जानकारी की और मौसम की जानकारी आंखों देखी या जो मुझे फील हो रहा है वो अगर मैं बात करूं तो बाहर हल्की सी धूप भी खिली है और बादल भी हैं। तो आजकल मौसम के बारे में क्या कहना, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम रोज़ अपने रंग बदल रहा है और हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि गर्मी

कन्हैया गई तो गई कहाँ, कहाँ वो खो गई हैं, उन्हें कहाँ रास्ता वो भटक गई हैं, क्योंकि ये जो बारिश है, ये जो बादल हैं, ये ही हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी मौसम के इस हाल को देखकर थोड़े से सोच में पड़ गए हैं। तो श्रोताओं, धर्मशाला की अगर हम बात करें तो तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है, और हवा में नमी की बात करें तो वो है 36%। तो मौसम के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मौसम के अनुसार ही आपके अपने कार्यक्रम बनाएं और मौसम के अनुसार ही अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखें। मौसम की बात छेड़ी है श्रोताओं, तो चलते हैं और मौसम की थोड़ी सी जानकारी आपके साथ विस्तृत जो है वो साझी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम की जो अटखेलियाँ लगातार वो चल रही हैं, और राज्य में शुक्रवार को कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से तेज बारिश जो है वो भी दर्ज हुई है। वहीं कुछ एक भागों में मौसम जो है वो साफ भी बना रहा श्रोताओं। और बात करेंगे 10 मई की, तो 10 मई को मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से मौसम करबट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 11, 12 और 13, 14 मई को प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 11 और 12 मई को अंधड़ और बिजली कड़कने की भी संभावना है। इन दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो श्रोताओं, मौसम की जानकारी के साथ हम यही कहेंगे फिर से कि अपना ख्याल रखिए, और कहीं भी जाने का कोई प्रोग्राम अगर बनाना है तो मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें। खैर, ये तो थी बाहर की मौसम की जानकारी, और स्टूडियो के अंदर की जानकारी जो है वो ये है कि स्टूडियो में हमारा जो माहौल है बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जो है वो इस समय हम सभी, आप सभी सुन रहे हैं और हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। जहाँ हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वहाँ हमारे दिल का मौसम जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ जुड़कर हमारे श्रोता भी बहुत अच्छा फील करते होंगे। तो और अच्छा फील करने के लिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। लता मंगेशकर और एसपी वाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में वंश फिल्म का ये गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और देखिए आज सैटरडे का दिन है और 9 मई का दिन है। तो श्रोताओं आज सैटरडे है और मुझे लगता है कि सेकंड सैटरडे जो है वो हम लोग मना रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स में भी आज के दिन छुट्टी है और बच्चे भी अपने घर में आज के दिन को एंजॉय करेंगे। और आज देखिए बच्चे बहुत खुश होंगे क्योंकि सैटरडे और संडे दो दिन की छुट्टी जब आ जाती है तो हर किसी के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हमें छुट्टी मिल जाए तो हम उन दिनों को और अच्छे से जो है वो बिता सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। तो बच्चों से हम यही कहेंगे कि मस्ती करना बहुत ज़रूरी है, अपने बचपन को जीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बचपन ही ऐसा है जो हमें एक बार मिलता है और जब बचपन चला जाता है तो हमें अपना बचपन बहुत याद आता है। क्योंकि बचपन में ऐसा होता है कि ना तो हमें रोज़ जल्दी उठने की टेंशन होती है, ना अपने काम पे जाने की टेंशन होती है, ना कमाने की टेंशन होती है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ खाने की और मस्ती की ही टेंशन होती है। हाँ, एक टेंशन जो है बच्चों के पास ज़रूर होती है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, होमवर्क मिला है वो भी करना पड़ेगा, जो कि बच्चों को बहुत भारी लगता है। लेकिन निश्चिताओं हम यही कहेंगे कि हम अपने बच्चों को उनके होमवर्क के साथ और उनकी पढ़ाई के साथ जोड़ सकते हैं, और वो भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। तो ऐसी ट्रिक्स जरूर आजमाइए और देखिए किस तरह से हम अपने बच्चों को उनकी पढ़ाई के साथ मज़े से जोड़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही कोई भी बच्चा है वो थोड़ा सा डर जाता है या ऊबने लग पड़ता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको आजमा के हम गेम्स में ही बहुत अच्छी पढ़ाई जो है बच्चों को करवा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, तो पढ़ाई को अब मज़ेदार बना सकते हैं। तो खैर आज छुट्टी का दिन है, पढ़ाई की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्यों हमारे नन्हे मुन्ने जो श्रोता हैं वो जुड़ जाएंगे और कहेंगे कि स्कूल में भी पढ़ाई, रेडियो पर भी पढ़ाई, टीवी में भी पढ़ाई। तो नहीं भाई, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। खैर श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं और आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम का समय रहता है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और अभी स्टूडियोज़ की घड़ी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 9:20, और अब समय है समाचारों का। तो चलते हैं, पहले सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है, अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए, 11 मई को भी नामांकन पत्र किए जा सकेंगे दाखिल। पंचायती राज एक्ट में संशोधन, जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होगा उत्पादन का सटीक आकलन, प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान योजना से जुड़े। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिमी बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में सभी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया है। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती 2 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 5,989 जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 209 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंडी में 4,180, शिमला में 2,675, चंबा में 2,581, ऊना में 1,941, सिरमौर में 1,797, हमीरपुर में 1,548, सोलन में 1,543, कुल्लू में 1,504, बिलासपुर में 1,281, किन्नौर में 423 नामांकन पत्र दर्ज किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
2: इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। पंचायती राज चुनाव के लिए सिरमौर जिला में दूसरे दिन बड़ी संख्या में नामांकन दर्ज किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से 7, 8 और 11 मई नामांकन दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गई है और अंतिम दिन और अधिक नामांकन दाखिल होने की उम्मीद है।
3: है कि आज दूसरा दिन था नॉमिनेशन का, और अगर मैं इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज लाऊं, बिकॉज हमारे जिला सिरमौर में टोटल 8 ब्लॉक हैं, तो टोटल अब तक जिला परिषद के हमारी 29 नॉमिनेशन फाइल हुई हैं, पंचायत समिति की हमारी टोटल 198 नॉमिनेशन फाइल हुई हैं, तो टोटल 703 लोगों ने प्रधानी के लिए अपनी नॉमिनेशन फाइल की है। उप प्रधान टोटल मैं बताऊँ 536 और वार्ड मेंबर्स के लिए टोटल 1240 तक नॉमिनेशन फाइल हुई है। तीसरा दिन हमारा जो आखिरी दिन होगा नॉमिनेशन फाइल करने का वो 11 तारीख होगी मंडे।
2: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अब संबंधित उपायुक्त व उपमंडलाधिकारी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कभी भी चुनाव करवा सकेंगे। संशोधित अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी होता था और 2/3 कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जाता है, जिसे किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सके। केंद्र की इस योजना के तहत प्रदेश के 93,870 राजस्व गांवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के आंकड़े सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया इन दिनों ऊना जिला में जारी है और अब तक लगभग 72,000 खसरा नंबरों के सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जो किसानों द्वारा कृषि अथवा बागवानी के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। इनमें से लगभग 28,000 सर्वेक्षण स्वीकृत भी हो चुके हैं। सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप और GPS तकनीक के माध्यम से फसलों की मैपिंग की जा रही है, ताकि किसानों की भूमि के रिकॉर्ड को फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन किसानों का अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द अपना ऑनलाइन कृषक पंजीकरण नजदीकी लोक मित्र केंद्र अथवा एग्रीस्टैक पोर्टल पर स्वयं सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि का कोई भी खसरा नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल OTP नंबर के लिए अपने पास रखना आवश्यक होगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और नीति निर्माता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार इन देशों में विश्व के करीब 68% किसान रहते हैं। ये सम्मेलन दो चरण में आयोजित होगा। पहला चरण आज से शुरू होकर 11 जून तक चलेगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट खेती, जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की गणना के लिए आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 से शुरू की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है और दुनिया की करीब 10% पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इस अभियान में वन अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्र, प्रकृति प्रेमी व पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी जानकारी ई बर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपलोड कर सकेंगे। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शिमला में शुरू हुआ। कोर्सेरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, ऊना में खैर कटान मामले में SIT गठित कर नए सिरे से जांच के आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण पर दिए झूठे आश्वासन पर मुख्य सचिव तलब। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, सुक्खू सरकार ने आम लोगों के लिए खोले सभी सर्किट हाउस। पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल के एक जैसे शब्द हैं, हिमाचल में पहली बार मतगणना केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कचरा फैलाने वाले होटलों, उद्योगों व संस्थानों के बिजली पानी कनेक्शन काट सकेंगे DC। अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है, जिला परिषद और BDC अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता समाप्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र किए जा सकेंगे दाखिल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन। जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होगा उत्पादन का सटीक आकलन। प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान योजना से जुड़े। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में शुरुआत है, यानी कि गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। तो देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत हम करेंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे आपको एक और प्यारा सा गीत। क्रिश फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत और सुनी आपने प्यार की, प्रेम की एक कहानी इस गीत के जरिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं सच में चिट्ठी की इसमें बात की गई है और जितने भी हमारे सैनिक हैं, हमारे योद्धा हैं, हमारे शूरवीर हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी कहानी, उनकी दिल की व्यथा बताता ये गीत था। खैर श्रोताओं, चिट्ठियों का ज़माना तो अब चला गया, क्योंकि ये उस समय की बातें हैं जब शायद मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे या हमारी एक दूसरे के साथ बात नहीं हो पाती थी, तो एक खत जो था वो ज़रिया बनता था एक दूसरे की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। तो आजकल तो खैर चिट्ठी लिखने का जो प्रचलन है वो ख़त्म हो चुका है और चिट्ठी हम लिखते भी नहीं हैं,

क्योंकि आजकल चिट्ठियाँ जो हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए जो है एक मिनट में लिख कर उसी समय वहाँ पहुँच जाती है, पर फिर भी अपने हाथों से कलम से लिखी हुई जो चिट्ठी होती थी उसमें जो एक एक शब्द होता था उसे पढ़ते पढ़ते जो आँखों में आंसू आते थे और जो एहसास होते थे वो एहसास अब ख़त्म से हो गए हैं। खैर श्रोताओं, बात हम जो है वो कर रहे थे अपने सैनिकों की, और जैसे कि हमने आज बात भी की है कि आज हम सभी महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती जो है वो मना रहे हैं। और आपको बताया भी हमने कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय और गुलामी को स्वीकार नहीं किया। उनका पूरा जीवन जो है वो मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए समर्पित रहा था। श्रोताओं, हल्दी घाटी का युद्ध आज भी उनकी वीरता की कहानी सुनाता है। उनके प्रिय घोड़े चेतक की वफादारी और बहादुरी भी इतिहास के पन्नों में अमर है। बिल्कुल श्रोताओं, और महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो इंसान कभी हार नहीं मानता है। तो साहस, त्याग और स्वाभिमान की मिसाल थे महाराणा प्रताप। उनकी वीर गाथाएं आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। तो आज के दिन हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए और देश प्रेम की भावना को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो श्रोताओं, देश प्रेम की भावना हमेशा हर किसी के दिल में जिंदा रहना चाहिए। और देश प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर खड़े होकर ही देश प्रेम दिखा सकते हैं, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति जो प्रेम है वो हम बहुत सारे अच्छे काम करके भी दर्शा सकते हैं। अपने पर्यावरण को बचाकर और अधिक पेड़ लगाकर और साथ ही जो रूल या जो भी कानून हमारे लिए बने हैं उन्हें फॉलो करके या उन्हें मानकर भी हम देश प्रेम जो है वो अपना जिंदा रख सकते हैं। तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत कार्यक्रम में हम लेकर आते रहते हैं और आपका मनोरंजन करवाते रहते हैं। लेकिन श्रोताओं, गीतों की जब बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं गीतों की पसंद जो है वो अपनी अपनी होती है। कुछ लोगों को किस तरह के गीत पसंद होते हैं, किसी को किसी तरह से, और कुछ लोग पुराने गीत पसंद करते हैं, कुछ नए पसंद करते हैं। लेकिन सबका ख्याल रखते हुए हम लोग गीतों में फेरबदल जो है वो करते रहते हैं। और श्रोताओं, देखिए, कई बार हम लोगों को कुछ ऐसी बातें पढ़ने में या देखने में मिल जाती हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर सच में एक सीख मिलती है। ऐसी ही एक बात बोल सकते हैं कि मैंने भी कहीं पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी, और मैंने यही सोचा कि क्यों ना जो हमें अच्छा लगता है उसे किसी और के साथ भी शेयर करना चाहिए, और उन्हें मैं शेयर करके यानी कि सेव कर लेकर आई थी आपके लिए, तो ज़रूर आपको सुनाऊंगी। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्धा से पूछा कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, और उस पर बुद्ध ने सूर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे देखो, वह हर रोज़ हर दिन उगता है, फिर भी उसे उगने का अभिमान नहीं होता, और जब डूबता है तब भी उसे कोई भय नहीं होता। इसलिए मनुष्य का स्वभाव भी सूर्य जैसा होना चाहिए, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का भय। तो श्रोताओं, ये थी वो लाइनें जो मुझे अच्छी लगी और मैंने आपके साथ की साझा। और बिल्कुल ऐसी लाइनों से हमें ज़रूर सीख मिलती है, सीखने को मिलता है, और इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि मनुष्य का स्वभाव सच में सूर्य के समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत भगवान के भी शुक्रगुजार हो जाते हैं, और बहुत पता नहीं कितनी बार तो भगवान के मंदिर में माथा टेक देते हैं कि धन्यवाद भगवान, आपने हमें ये दिया। लेकिन जैसे ही कुछ बुरा हो जाएगा ना, तो हम लोग कोसने भी शुरू होते हैं कि भगवान ने हमारी लाइफ में ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों क्यों क्यों। तो ये जो छोटी सी कहानी थी जो हमें अभी मतलब आपको मैंने सुनाई, तो उससे यही सीख मिलती है कि अच्छा हो बुरा हो, हमें अपना स्वभाव जो है वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। जैसा भी समय आ जाए हमें उसके साथ हो लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये लाइनें अच्छी लगी होंगी और आपने भी इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और बातों को यहीं पर देते हैं विराम, क्योंकि आपका मनोरंजन भी हमें करवाना होता है, जिसके लिए हम लेकर आते हैं प्यारे प्यारे गीत। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनाएंगे ये वादा रहा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुनेंगे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपके अपने रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और इस गीत के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे श्रोताओं तनाव की। तनाव की बात करने का मकसद ये नहीं है कि आपको तनाव में डालना है, लेकिन हाँ, आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो तनाव में रहते हैं। कई बार हमें काम का इतना स्ट्रेस होता है, कई बार हम लोग बहुत सारी बातें जो हैं वो किसी से कह नहीं पाते या कहने का समय नहीं मिल पाता, चाहे हमारा काम हो चाहे हमारी फैमिली हो। तो वो सब चीज़ें जो हैं, वो सब बातें जो हैं, वो हमारे दिल में हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और बार बार हमें याद आती हैं और उससे हम लोग तनाव में चले जाते हैं। तो श्रोताओं, तनाव को हम आम बात मानकर टाल तो देते हैं, पर ये बड़ी समस्या बन सकती है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें तनाव किस वजह से हो रहा है, कौन से ऐसे डिसीज़न हैं जो हमने ले लिए हैं और अब उनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं, या उससे कैसे हम बच सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए और किसी से बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई हल ज़रूर मिलता है, लेकिन जब हम किसी बात को अपने अंदर रखते हैं और किसी के साथ साझा नहीं करते हैं तो वो तनाव में बदल जाती हैं। इसलिए अगर आपको भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, किसी बात का तनाव है, तो आप किसी अपने के साथ, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जो आपको इससे बाहर निकाल सकता है, उससे बातचीत ज़रूर करिए। क्योंकि कई बार हम बात करते हैं तो उसका हल हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो श्रोताओं, आजकल के समय में बोलते हैं ना कि काम बहुत ज़्यादा है, हमारे पास समय नहीं है, और बहुत सारे काम जो हैं हमारे दिमाग में भी चलते रहते हैं कि कौन सा काम कैसे करेंगे, ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, और ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे दिल दिमाग में रहती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार हमें थकान बहुत ज़्यादा होती है, सिर दर्द होने लग पड़ती है, गर्दन में दर्द, कंधे की जकड़न, मुहासे, बाल झड़ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं तनाव के कारण भी हो सकती हैं। और तनाव के कारण कुछ लोगों का वजन भी कम हो जाता है और कुछ लोग मोटापा जो है वो भी झेलते हैं। तो शरीर के भीतरी और बाहरी सिस्टम इससे दुष्प्रभाव से जो है वो उसके लक्षण जो है दिखने लगते हैं। तो तनाव के कारण कई लोगों में तेज हृदय गति, पाचन समस्याएं और ऐसी बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो हमें दिखते हैं। तो ऐसे में श्रोताओं, हम आपसे यही कहेंगे कि आपको उपचार की ज़रूरत है और आप उसका उपचार कर सकते हैं। कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। और आपकी लाइफ में अगर आपके अच्छे दोस्त हैं जो आपके साथ बातचीत करते हैं और जिनसे बात करके आपको हल्का फील होता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकल आता है, तो हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। अपने अंदर कोई भी बात हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए श्रोताओं। तो तनाव से बचिए, और अगर आपको ऐसे लोग मिलते भी हैं जो तनाव में हैं तो उनसे बात कीजिए। उनका तनाव अगर आप कम कर पाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इस बात को अब यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तनाव की बात करेंगे तो कहीं तनाव बढ़ ना जाए। बिल्कुल, तो चलते हैं तनाव को कम करने के लिए, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। घायल फिल्म का ये गीत अब आप सभी सुनेंगे आपके अपने रेडियो सेट पर आशा भोसले और समीर कुमार और कुमार शानू की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत से बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं और ये नहीं सोचते कि सोचना छोड़ देते हैं, जो भी होगा वो देख लेंगे भाई। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोच से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ही होती है। और श्रोताओं, आपने इस गीत को अगर ध्यान से सुना होगा तो इसने ये भी कहा कि आज ये ना कल आएगा, बिल्कुल जो आज हम जी रहे हैं ये दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए सोच के आज को क्यों खराब करें। और सोच कर तू क्या पाएगा, सोचने से अगर कुछ मिल जाता होता तो हम सोचते ही ना रहते, इसलिए सोच कर भी कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होकर ही रहेगा। और असली इंसान वही है जो हंसते गाते जिए, इसलिए हमें भी अपने जीवन को बड़े ही अच्छे तरीके से जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और इस समय कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। 91.2 मेगा हर्ट्स श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो चलिए श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, खुदा गवाह। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में लीजिए, सुनिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप 88.4 MHz पर हमीरपुर के डटवाल की आवाज़ पर भी सुन रहे हैं और सुन भी सकते हैं। श्रोताओं, तनाव की हम बात कर रहे थे और तनाव आजकल जो है वो बिज़ी लाइफ की वजह से भी आ जाता है, लेकिन देखिए जब हमारे कोई फंक्शन या कुछ भी त्यौहार आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ध्यान को, अपने मन को कहीं और लगा देते हैं, और जब ऐसा माहौल मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस जो है वो कम होता है। और आजकल का समय भी ऐसा ही चल रहा है, आजकल जगराते, नुआले और शादियों का जो दौर है वो भी चला हुआ है और शादियां भी लगी हुई हैं, तो आपको अगर कहीं भी ऐसा कोई फंक्शन है तो जाकर ज़रूर से एंजॉय कीजिए और तनाव से बचिए, और ज़रूर कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोगों के बीच में उठना बैठना हो आपका, और लोगों से मिलना बैठना होने से हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनसे बात करके हमें हल्का महसूस होता है। कहते हैं कि बिज़ी लाइफ में हमें थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए, अपनों के लिए निकालना चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हम किसी बहाने से उनसे मिल पाते हैं और अपने आप को अच्छा फील करवा पाते हैं। तो शादियों की बात हमने की है तो चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं आपको और आपको भी फील करवाते हैं अच्छा अच्छा। तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत अब आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं हम शादियों वाले माहौल में पहुंच गए थे, और ऐसा लग रहा था कि सच में शादियों में ऐसे ही गीत बजते हैं, और मेहंदी का तो प्रचलन जो है शादी में ही होता है ज़्यादातर। श्रोताओं, इस गीत को सुनते सुनते कहीं ना कहीं हमारा ख्याल जो है वो आजकल की शादियों में, आजकल के रीति रिवाज में भी चला गया, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब थोड़ी गुम होती नज़र आती हैं। जैसे कि आजकल हर चीज़ का रेडीमेड का एक ज़माना जो है वो आ गया है। पुराने समय की बात करें तो हाथ से बने हुए कलीरे, जिन्हें बनाने में घर की गृहिणियाँ और जो महिलाएं थी वो बहुत समय लगाती थी, बारीक काम करती थी, सुई में धागा पिरोना और उस धागे में धीरे धीरे छोटी छोटी फुलियाँ या मखाने, ये सब चीज़ें जो है पिरो कर कलीरे बनाती थी, बहुत सुंदर सुंदर। खैर, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आजकल जो है वो रेडीमेड का ज़माना है, तो आजकल की डिमांड बढ़ गई है कि हमें वो कलीरे नहीं, हमें रेडीमेड कलीरे चाहिए। उसके साथ ही बात करें अगर ड्रेसेस की, यानी कि जो दुल्हा दुल्हन ड्रेस पहनते हैं, तो पुराने ज़माने में जो हमारे पुराने एक रीति रिवाज के हिसाब से जो भी ड्रेस चलती थी उसे पहना जाता था, लेकिन आजकल लहंगों का ज़माना आ गया, और लहंगे भी बहुत तरह के लहंगे आजकल मिलने लग पड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि बुरी बात है, अच्छी बात है, हर चीज़ का थोड़ा सा बदलाव होना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ रीति रिवाज की बात आती है या ब्याह शादियों की रौनकों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पुराने समय का जो रीति रिवाज थे वो अब जो है वो नज़र बहुत कम आते हैं। शादियों में रौनक होती थी और 2-3 महीने पहले ही पता चल जाता था कि किसी घर में शादी है, रोज़ सभी इकट्ठे होते थे शाम के समय, और ढोलकी लेकर जो है वो वहाँ के अपने जो लोकल गीत होते थे वो गाए जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल हफ्ता भर पहले जो है वो शुरू हो जाता है नाच गाना, लेकिन हाँ, वो जो अपने पुराने गीत हम लोग गाते थे, अपने लोक गीत जो गाते थे, वो कहीं खो गए हैं, क्योंकि आजकल हर किसी का ध्यान होता है डीजे पर, कि डीजे नहीं लगा इट मीन्स कि हमें फील ही नहीं आता कि शादी हो रही है। तो श्रोताओं, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने गीत हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएँ हैं, वो कहीं ना कहीं खोती हुई नज़र आती हैं। तो इन्हें ज़िंदा रखना भी हमारा काम है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ते चले जाएंगे तो आगे आगे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो अपने रीति रिवाजों को ज़िंदा ज़रूर रखिए, और जो रीति रिवाज बने हुए हैं, हल्के फुल्के जो हमारे लोक गीत, जिन्हें कि हमारे घर की दादियाँ नानियाँ संजो कर रखी थी, उन्हें भी हमें संजो कर रखना है, उन्हें भी हमें सीखना है, उन्हें भी गाना है और गुनगुनाना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी या हमारे जो बच्चे हैं वो भी उन्हें समझ सकें, और नहीं तो ये चीज़ें खो जाएंगी। तो श्रोताओं, गीत के माध्यम से हमें ये बात दिमाग में आई और हमने आपके साथ साझा की, और ऐसा ही होता है कि कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें जो हैं आपके साथ शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि सच में ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो कैसे हम अपने रीति रिवाज को बचा सकते हैं, किसे हम अपनी परंपराओं को ज़िंदा रख सकते हैं, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को। अनमोल फिल्म का ये गीत हम लेकर आए हैं श्रोताओं, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

रहेगा, सोचिए ज़रा। और मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी ही सब्जी की जिसे देखकर या जिसके बारे में सुनकर कुछ लोगों के नाक चढ़ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, कहते हैं ना, कई बार कईयों की बातें जो होती हैं ना, वो हमें करेले की तरह लगती हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं करेले की सब्ज़ी की। करेला श्रोताओं, खाने में भले ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े काम की चीज़ करेला ही माना जाता है। और अगर विशेषज्ञों की बात माने तो करेला कुपोषण और कई बीमारियों से बचाव में बेहद कारगर भी होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। और श्रोताओं, करेला खाने में तो होता कड़वा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन उसके साथ ही आपको पता है, करेला जो है हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। करेले को अगर आप छीलेंगे और उसका छिलका, या फिर करेले को ही आप थोड़ा सा पीस कर अगर पेस्ट बनाकर अपने फोड़े फिंसियों पर कहीं भी लगाएंगे, तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होने लग पड़ते हैं। तो आप करेले को ऐसा ना सोचें, करेला बहुत लाभकारी है, ज़रूर उसे हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लिए अगर आप करेला बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनाइए कि उन्हें ज़्यादा कड़वा ना लगे, लेकिन हाँ, उस सब्ज़ी से थोड़ा सा उन्हें प्यार हो जाए या वो उसे खाना शुरू कर दें। करेला ही नहीं श्रोताओं, बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें खाना बहुत ज़रूरी है। और करेले की हम बात कर रहे हैं, तो करेला, देखिए, करेले में मौजूद जो खनिज और विटामिन होते हैं, वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी का मुकाबला भी किया जा सकता है। तो श्रोताओं, बीमारियां भगवान करे किसी को ना हो, और बीमारियां हो जाएं तो बहुत सारी जो दवाइयां हमें खानी पड़ती हैं ना, उनसे बचने के लिए बहुत सारे हमारे किचन में ऐसे मसाले और ऐसी सब्जियाँ रहती हैं जिनका हम अगर इस्तेमाल करेंगे खाने में, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो श्रोताओं, ज़रूर आप में से बहुत सारे लोगों ने आज करेला बनाया होगा, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो ज़रूर बनाने के बारे में सोचेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप तक

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं और जैसा कि आपको हमने बताया भी था कि कार्यक्रम का समय रहता है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। श्रोताओं, ये 2 घंटे हम आपके साथ बिताते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये 2 घंटे कब निकल जाते हैं। श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम करेंगे कि चिंतन करो चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। बिल्कुल, कई बार हम चिंता में पड़े रहते हैं लेकिन हमें चिंता करनी नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और नए विचारों को जन्म देना चाहिए। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है उसे मैं सीख लूँगा। सीखने की एक जो ललक है वो हम में अगर हो तो हर काम हमारे लिए आसान हो सकता है। लेकिन कई बार हम कई काम को करने से डरते हैं कि ये मुझे नहीं आता है और हम बार बार यही कहते हैं मुझे ये नहीं आता, लेकिन कोशिश करने पर वो काम भी हमें आ सकता है, लेकिन उसके लिए कदम हमें उठाना ही पड़ेगा। कभी कभी जीतने के लिए हार का संकट भी उठाना पड़ता है श्रोताओं, इसलिए अगर हार आ भी जाए, हार का मुंह देखना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा से उठिए और कोशिश कीजिए, कभी ना कभी जीत हमें ज़रूर मिलेगी और ये सोच ही है जो हमें जीत तक पहुँचाती भी है। कहने का अर्थ बस यही है कि हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है और सोच को सकारात्मक भी रखना है। सकारात्मक सोच हमेशा बनाए रखिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सकारात्मक सोच रखते हैं और आपको आगे बढ़ाने में आपका साथ भी दे सकते हैं। तो श्रोताओं, बातों को अब यहीं पर रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में आपको सुनवाते हैं अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों, इस फिल्म का गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत श्रोता हूँ, और कार्यक्रम में अब समय भी हमारे पास कम है आज के इस कार्यक्रम के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तो श्रोताओं, आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की और आपको सुनवाए गीत। उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत ज़रूर पसंद आए होंगे। अब चलते चलते आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में कन्यादान से। और इस गीत के साथ ही आपको अब देनी पड़ेगी इजाज़त मुझे जाने की। श्रोताओं, फिर से किसी और कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, नमस्कार, जय हिंद। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है,
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देखो क्या हो गया।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: कैसे ना आजकल हड्डी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बीबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं।
9: फिर
8: क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देख लो क्या हो गया।

0: यस।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ एक बार आप सभी फिर से जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं दोस्तों, कार्यक्रम की एक और कड़ी लेकर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो हमारा ये प्रयास कितना आप सभी तक पहुंच रहा है, ये तो आपके फीडबैक या फिर आपके सवालों से पता चलेगा। और आई होप सो कि आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल और बहुत अच्छी अच्छी जो हमें एडवाइस दे रहे हैं या दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से आप सभी का सहयोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में बना रहना चाहिए। तो स्वागत है मैम आपका इस बहुत ही खास कार्यक्रम में, बहुत ही खास बातचीत में, जिसमें कि हम अपने दोस्तों के लिए बहुत ही खास खास जानकारियां उनकी अवेयरनेस के लिए लेकर आते हैं।
2: थैंक यू सो मच रुचिका
1: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
2: हम अच्छे, आप कैसे?
1: बहुत बढ़िया। तो मैम, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है हमारे लिए, क्योंकि अक्सर हम यही सुनते हैं कि पर्सनालिटी किस तरह से मेंटेन करनी है, बस यही सोचते हैं हमेशा। और एक दूसरे से बस दिखावे के लिए हम एक तरह से जेलेसी फैक्टर भी आ जाता है कि नहीं,
2: कॉम्पिटिशन
1: है ना, कॉम्पिटिशन बन जाता है। बट डिसऑर्डर की तरफ जो है हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इसीलिए हम अपने दोस्तों को इस बारे में जानकारी पिछले कड़ी में पहुंचाई थी। और हम क्लस्टर्स की बात कर रहे थे, तो ए बी क्लस्टर की हमने बात की थी। तो मैम थोड़ा सा शॉर्ट में हम अपने दोस्तों को उसको एक बार रिकैप करें।
2: बिल्कुल जी। देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके थॉट, इमोशंस और व्यवहार क्रोनिकली यानी कि बहुत लंबे समय तक एक जैसे ही रहे हैं, उनका एक प्रकार का बिहेवियरल पैटर्न है जो कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट है, वो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है, वो बार बार रिपीट होता है। और जब ऐसा होता है तो उनको या उससे भी ज्यादा उनके आसपास के जो एनवायरमेंट में लोग प्रेजेंट होते हैं, उन्हें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिनको होता है, उनका जो एनवायरमेंट होता है, उन लोगों को काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिन्हें हैं, उन्हें इनसाइट ही नहीं होती, अवेयरनेस ही नहीं होती कि हम में भी कोई प्रॉब्लम है या हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें लोगों को एक प्रकार की अवेयरनेस होती है, इनसाइट होती है कि ठीक है, मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब ऐसे लोग थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं, तब उनमें इम्प्रूवमेंट्स देखना ज्यादा आसान और बेहतर हो जाता है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं बचता, क्योंकि उनमें इनसाइट ही नहीं होती अबाउट देयर रॉन्ग बिहेवियर्स और अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को साइकोलॉजी में तीन अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग पिछले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने क्लस्टर ए और बी को अंडरस्टैंड किया था।
1: बिल्कुल।
2: क्लस्टर ए में हमारे थे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें हमारा स्किज़ोटिपिकल एंड स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी थे। ऑन द अदर हैंड, क्लस्टर बी में हमने डिस्कस किया था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद अब बात आती है क्लस्टर सी की, क्लस्टर सी जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड ओसीपीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आज तक आपने ओसीडी सुना होगा या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सुना होगा, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी है जहां पर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव और कंपल्सिविटी के ट्रेट्स को देखते हैं।
1: सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले कहा ना मैम कि हमारे लिए तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम ही नया है, लेकिन उसके आगे भी कुछ और कैटेगरी है, तो ये तो और ज्यादा हमारे लिए जानने के लिए ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करेंगे कि आप भी इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे और बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे, और अगर ऐसा हो तो हमें कितना केयरफुल रहने की जरूरत होती है और किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं इन सारे डिसऑर्डर्स से। तो फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम फिर से वापस आते हैं अपनी इस पर्सनैलिटी को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए, डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। तो बने रहिए आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी के इस मनपसंद कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की क्लस्टर सी की। तो मैम आपने अभी इस छोटे से ब्रेक से पहले बात की क्लस्टर सी में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अवॉइडेड डिसऑर्डर के बारे में। तो उसमें किस तरह से पर्सन को चीजें फेस करनी पड़ती हैं या कैसे पता कर सकते हैं हम कि वो जो कैटेगरी है हम में आनी शुरू हो गई है?
1: देखिए, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो व्यक्ति होते हैं जिनमें एक प्रकार का फियर बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट रहता है, और वो फियर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ बीइंग जज्ड और फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें अपनी बुराई या अपनी खामियां अगर उन्हें कोई बता दे तो उन्हें बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, पिंच हो जाता है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, और यहीं से ही उनके बाकी के बिहेवियर्स ऑपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सोशल इंटरेक्शंस या फिर सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाते। उनका लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज ही यही रहता है कि वो रिलेशन में अगर लेट्स से आ भी जाते हैं तो भी उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और वो कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है अपनी गलतियों पर नजर डालना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उन पर काम करना, और यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है।
0: गलती एक्सेप्ट करना, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। सब सही बात है ये मैम कि हर कोई, हमें क्या आदत होती है ना दूसरों को ब्लेम कर देना, लेकिन कभी भी अपनी गलतियों पे काम करना ये तो हमारे लिए जैसे आफत ही हो जाती है। तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं?
1: देखिए, जो भी जैसे अवॉइडेंट है और इसके बाद जब हम लोग डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी डिस्कस करेंगे, तो देखिए ये दोनों ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो हमारे अटैचमेंट स्टाइल के आधार पे डेवलप होते हैं। अटैचमेंट स्टाइल की अपनी एक बहुत ही आसान सी थ्योरी है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं
0: जी।
1: ऐसे मानिए कि अगर एक छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और पेरेंट्स अपने ही किसी परेशानी में या किसी परिस्थिति में व्यस्त हैं, और वो गया और बोला पापा पापा देखो क्या हो गया, उसको चोट लग गई, लेट्स से देखो क्या हो गया, लेकिन पापा ने उसको अच्छे से एड्रेस करने की बजाय उसको डांट दिया कि ये क्या करके आए हो, मैं तो बोलता हूँ तुम काम ठीक से नहीं करते हो, मुझे काम करने दो, खुद तो कुछ किया नहीं, मुझे भी नहीं करने दोगे, जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। अब ये बच्चा ऐसे बिहेवियर के बाद अपने पापा के पास के दोबारा जा पाएगा कंफर्टेबली?
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: नहीं, यानी कि बचपन में ही जो एक चाइल्ड और पेरेंट का कनेक्शन होता है, उनका जो कम्युनिकेशन होता है, जो बॉन्ड है, उसके आधार पर बच्चा ये परसीव करने लगता है कि क्या मैं अपने चैलेंजेस या नीड्स को सामने वाले व्यक्ति के पास ले जाने के लिए कंफर्टेबल हूँ या नहीं, मैं सामने वाले व्यक्ति पर कितना रिलाई कर सकता हूँ या नहीं। ये सब डिपेंड करता है कि एक पेरेंट चाइल्ड को कैसे डील करता है।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों मैम ने, क्योंकि अक्सर वही बात बार बार एक ही बात आती है। बच्चों से जुड़ी बात करें तो मेन रोल जो आता है वो पेरेंट्स का ही आता है कि पेरेंटिंग किस तरह से है। पेरेंट्स बोलना तो आसान है लेकिन उस रोल को निभाना उतना ही मुश्किल है। बहुत सारी ऐसे केसेस होते हैं कि माँ बाप जो है सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस वर्क या जो भी है घर का काम, और शाम को उनका भी ये होता है कि नहीं अब जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या तो दिन भर का गुस्सा जो होता है उनके दिमाग में चल रहा होता है और एकदम से बच्चे ने आके कुछ पूछ लिया तो वो उसे डांट डपट कर शांत करा देंगे या तो उसे साइड भेज देंगे, रूम में भेज देंगे। तो बच्चा जो, तभी तो आज का टाइम ये इसलिए आया है कि बच्चा खुलकर पेरेंट्स से बात कर ही नहीं पाता है। वो अपने मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी उसको परेशानियां हो रही हैं, चाहे स्कूल में उसके साथ किसी की लड़ाई हो गई है, कल को उसको पता नहीं किस सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन वो पेरेंट्स से खुलकर बात, क्योंकि उसे पता डांट पड़ेगी।
1: उसको यही है कि पेरेंट को पता ना वो मुझे बहुत डांटेंगे या वो परेशान हो जाएंगे, और परेशान होंगे तो क्या होगा, मुझे
0: डांट पड़ेगी।
1: तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना सीख ही नहीं पाते, और यहीं से फिर शुरुआत हो जाती है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जो है वो आम व्यक्तियों में भी होता है, लेकिन जब ये अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल एक बड़े रूप में अपनी उनकी पर्सनैलिटी में एक जब छाप छोड़ जाता है, तब जाकर वो बनता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
0: बिल्कुल, तो अवॉइड करना तो खैर जब हमें कोई अवॉइड करे तो

0: अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अपनी अंदर की जो हमारी कुछ ऐसी बोलते हैं हैबिट्स होती हैं, उन्हें सुधारना, तभी हम सुधार पाएंगे जब हम उसे अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे।
1: बिल्कुल
0: समय के साथ उन्हें पहचानना, समय के साथ उस चीज को समझना, और उसके लिए मैम मुझे लगता है कि जरूरत रहती है हमें खुद को समय देने की। पेरेंट्स का समय बच्चों के लिए अलग बात है, लेकिन बच्चे भी खुद को समझने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने क्या किया है, कहाँ कमी रही है, कहाँ उन्होंने अच्छा भी किया है। जरूरी नहीं हम कमी की बात करें, कुछ चीजें अच्छी भी हुई होती हैं उनके साथ।
1: नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, तो आपको एक नया पहलू समझने को मिलेगा।
0: जी
1: असल में क्या है, जब हम लोग डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं ना रुचिका, तो यहाँ हम लोग बड़े बड़े ट्रॉमास के बारे में बात कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: यानी कि रिपिटेटिव बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पेरेंट्स इस प्रकार का बिहेवियर रिपिटेटिवली करेंगे, तब जाकर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होगा और वहां से शुरुआत होगी, वो एक बीज डल जाएगा और फिर बड़ा होकर पेड़ क्या बनेगा, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये बात है तब की, जब इंटेंसिटी ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, रिपिटेशन है, तो बच्चा अपने पेरेंट के साथ कैसे एसोसिएट करेगा, इसी प्रकार से कि छोड़ो उनके पास जाके प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं,
0: नहीं होगी।
1: मुझे खुद से ही करना पड़ेगा, तो वो खुद से ही हर चीज करेगा। और खुद से करने के चक्कर में क्या होगा, वो दूसरों के साथ एसोसिएशंस क्रिएट करना नहीं सीख पाएगा। यहाँ तक कि जब भी कोई भी ऐसा चैलेंज आएगा बड़े होने के बाद, एज एन एडल्ट कोई रिलेशनशिप में है, रोमांटिक रिलेशन लेट्स से, या कोई फ्रेंडशिप है, वहां कोई चैलेंज आता है और सामने वाला पार्टनर कहता है कि नहीं इस बारे में मुझे बात करनी, तो बोलेगा मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उनके लिए वो चीज एक प्रकार से बहुत एंजाइटी क्रिएट करेगी, उनको वो बहुत एंग्जियस फील देगा। क्योंकि जब जब बचपन में वो अपने पेरेंट के पास जाते थे टू कन्फ्रंट वॉट दे आर गोइंग थ्रू और वॉट दे आर यू नो इनसाइड ऑफ देम, जो हो रहा है, जो असल में उनके ऊपर जो बीत रही है,
0: थॉट्स चल रहे हैं
1: जो
0: कुछ
1: भी
0: भी,
1: उन्होंने शेयर किया, उसके बाद क्या मिला उन्हें, उन्हें मिला
0: डांट।
1: डांट, उन्हें मिला निगलेक्ट, उन्हें मिला नॉट सो केयरिंग रिस्पॉन्स। तो उनको ये लगता है कि मैं ये डिजर्व ही नहीं करता, और क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता, या सामने वाला मुझे वो देगा ही नहीं, या सामने वाला शायद उतना केपेबल ही ना हो, इनफैक्ट यहाँ तक कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो व्यक्ति एक समय के बाद गिव अप कर चुका होता है, तब जाकर अवॉइडेड अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है और वहां से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शुरुआत हो
0: शुरुआत
1: पाती है।
0: होती है। बिल्कुल, तो इसके बारे में हम और भी जरूर जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले फिर से चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की, और उसके बाद फिर से आप सभी से मिलते हैं। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी, तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी अपने इस बहुत ही खास कार्यक्रम और खास बातचीत के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डिफरेंट कैटेगरीज की क्लस्टर्स की सी क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं आज की इस खास बातचीत में। तो आइए मैम से जानते हैं, बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ जो है आपके लिए अवेयरनेस से जुड़ी बातें हैं, तो जरूर इन बातों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगी। कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को समझ नहीं पाते हैं या बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं या हमें जो ये मैम ने कहा कि जो ये बिहेवियर बार बार जो हम रिपीट करते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज में फिर हम पहुंच जाते हैं जो ये डिसऑर्डर हम फेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये चीजें हो रही हैं तो इसके किस चीज में हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो यही सब जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं ताकि आप इन चीजों से ना गुजरें और अगर गुजर रहे हैं तो शुरुआती दौर में ही अपने आप को संभाल लें और बच्चों की जिंदगी को संभाल लें। तो मैम हम बात कर रहे थे अवॉइडेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, हमने बात की और अभी हम बात करते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। तो उसमें हम किस तरह से मतलब कि उसे किस तरह से फेस करते हैं?
1: देखिए डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है इसके पीछे भी एक अटैचमेंट स्टाइल है।
0: ओके
1: उसको बोलते डिपेंडेंट अटैचमेंट स्टाइल, है ना
0: जी।
1: उसको एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल भी बोला जाता है। देखिए ये उन बच्चों में डेवलप होता है ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो बचपन में अपने पेरेंट्स के पास गए और उन्होंने एक बार बोला कि हाँ बेटा चलो चलो क्या हो गया हम आपकी मदद करते हैं, और दूसरी बार बोला कि हर बार मेरे पास ही आ जाता है, चल दूर हटो।
0: बिल्कुल
1: यहाँ पर आ गई कंफ्यूजन। तो पहले तो
0: आराम से
1: आपने रेपिटेटिवली बच्चे को हर काम में सहायता दी।
0: बिल्कुल
1: बच्चे को आपने ऑटोनोमी नहीं सिखाई, बच्चे को आपने डिपेंडेंट कर दिया और अब आप कह रहे हो कि चलो हटो खुद से करो जाके।
0: एकदम से
1: आपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनने के टूल्स नहीं सिखाए। ऐसे में बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे को जीवन के चैलेंजेस को फेस करते वक्त ये लगेगा मैं परेशानी में हूँ तो मैं अपने सीधा पेरेंट्स के पास भागू। पेरेंट्स के पास जाएगा और हर बार जाएगा क्योंकि उसके पास अपने चैलेंजेस को सॉल्व करने के टूल्स ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है परेशानी सॉल्व कैसे होगी या करना क्या है।
0: बिल्कुल
1: अब ऐसे में पेरेंट्स को भी बहुत प्राइड फील होता है क्योंकि देखा मैंने बोला था मेरे पास आओगे तो ही तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा।
0: बिल्कुल
1: पर एक समय ऐसा आएगा जब पेरेंट्स बोलेगा अब तो मैं नहीं करूंगा अब तो तुम्हें खुद से करके देखो। तो यानी कि बच्चे के पांव से आपने तुरंत जमीन खींच ली, अब बच्चा घबरा जाएगा। अब जो बच्चा घबराएगा उसको एंजाइटी फील होगी, उसको इनसिक्योरिटी होगी कि अब मैं क्या करूं। अब उसे पता ही नहीं है कि प्रोसेस कैसे करना है, कि मैं अपने आप को फंक्शनल कैसे रखूं, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इस तरह के अटैचमेंट स्टाइल को बोलते हैं डिपेंडेंट और एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल। इसमें एक व्यक्ति के अंदर एक बच्चे के अंदर फियर काफी रहता है। फियर किस चीज का, इस चीज का कि मैं अकेला रह गया तो।
0: बिल्कुल और होता है अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है,
1: मैं अकेला रह गया तो मैं कैसे संभालूंगा चीजें, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे किसी की सपोर्ट की ही जरूरत है। तो उनके अंदर डिपेंडेंसी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑन देयर रिलेशंस। धीरे धीरे ये उनके पर्सनैलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत वाइटल पार्ट बन जाएगा और आने एज एन एडल्ट उनके अंदर ही डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं नरोचिका, ये लोग अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं,
0: डिपेंडेंट हो चुके होते हैं।
1: सो दीज आर द वंस हु विल सीक वैलिडेशन, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ,
0: मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका मतलब डेवलप ही नहीं हो पाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल वो लो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, वो अपनी वर्थ को डाउट करेंगे, अपने पोटेंशियल को डाउट करेंगे, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में उनको काफी चैलेंजेस आएंगे। लेकिन क्योंकि इनसाइट होती है इस प्रकार के सिनेरियो में अधिकांश लोगों में, तो अधिक वो उसके अकॉर्डिंगली इनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो इजीली देखी जा सकती है। लेकिन हाँ अपने ऊपर चैलेंज को फेस करना पड़ता है, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, उसको बिल्ड करना पड़ता है। इवन इन थेरेपीज वी बिल्ड अ पर्सन सेल्फ वर्थ, वी बिल्ड हाउ अ पर्सन परसीव्स देमसेल्व्स, वी बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो जब ये चीजें पॉसिबल हो जाती हैं तो एक व्यक्ति का डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनना भी पॉसिबल हो जाता है।
0: तो मैम ये क्या मतलब एनवायरमेंटली ऐसा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से ही ये डिसऑर्डर हमें फेस करना पड़ता है, मतलब बच्चों को या पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ फिर डील करना मुश्किल हो जाता है।
1: देखिए कोई भी, सिर्फ यही नहीं, कोई भी डिसऑर्डर होता है ना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, तो उसमें तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तीन चीजों से बेसिकली ऐसा माने कि तीन तत्व है, ये तीन तत्वों से मिलकर हमारा मेंटल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजी, एक व्यक्ति का बिहेवियर डेवलप होता है। वो क्या है? व्यक्ति की खुद की सोच और खुद की वैल्यूज, खुद का एक जो विवेक होता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग विवेक है। दो बच्चे जो सेम वातावरण में पले बड़े हों, जिनको सेम प्रकार की शिक्षा, सेम स्कूल में भेजा गया हो, सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सेम जीन्स हों, वो दोनों बच्चे भी अलग अलग निकलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोनों व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक अपना यूनिक माइंडसेट होता
0: है, सोचने का अलग तरीका है।
1: तो ये हो गया उनका माइंडसेट। दूसरा होता है उनका सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि उनका परिवार, उनके परिवार में उनके रिश्ते कैसे हैं, परिवार वालों के आपस में रिश्ते कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, स्कूल में टीचर्स कैसे हैं, व्यक्ति के एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं लाइफ में। और तीसरा होता है हमारे जीन्स, हमारे फैमिली में एंसेस्टर्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई है, हमारी हेरिडिटी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हमारे डीएनए में क्या कुछ है। ये इस प्रकार से है, जैसे कि कोई व्यक्ति था जो कभी भी दारू नहीं पीता था और उसको लिवर कैंसर हो गया, समझ रहे हैं? अब इसका कॉज क्या उसकी हैबिट थी या बिहेवियर था? नहीं। क्या इसलिए हो गया क्योंकि उसके पड़ोसी या उसका भाई, बड़ा भाई पीता था? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी बच गई? जेनेटिक्स। तो जीन्स की वजह से उसको ये चीज ट्रिगर हो गई। सिमिलरली विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, अगर हमारे एंसेस्टर में ऐसा कोई व्यक्ति रहे हैं, ऐसे कोई पूर्वज रहे हैं जिनको लेट से कोई इसी प्रकार का मूड डिसऑर्डर था, तो हमारे अंदर जरूरी नहीं है कि हमने लाइफ में बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस देखे ही हों, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा ही हो, या फिर हम बड़े पॉवर्टी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हों, हमने बड़े हताश रहे हों अपने जीवन में, ऐसा भी नहीं है। ना ऐसा है कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है, तो भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उस मूड डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स में है और वो जीन्स स्ट्रेस के कारण या किसी भी रीजन के कारण वो ट्रिगर हो गई तो होगा। तो इस प्रकार से बात होती है रुचिका। तो इसीलिए किसी भी एक व्यक्ति पर या जैसे पेरेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से डेवलप होता है। उन पर पूरी तरीके से ब्लेम नहीं डाला जा रहा है, पेरेंट्स पर ब्लेम नहीं डाला जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ इस बारे में बात करी जा रही है कि कैसे एक बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है जिसकी जड़े हमारे बचपन में घुसी हुई होती है, बचपन से वो जड़े आ रही होती है। तो अगर हमें काम करना है अपने ऊपर, तो हमें अपने ऊपर वो अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, हमें वो रेजिलियंस रखना पड़ेगा। जबकि आज के समय के जो लोग, जो हम लोगों के जनरेशन के जो लोग हैं, वो लोग जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इस प्रकार के कोई मिस्टेक ना करें।
0: बिल्कुल। तो ये बातें जब हमारे सामने या हमने सुनी होती है और हमारी लाइफ में अक्सर जब ये होने लगती हैं, तब हमें रियलाइज हो जाता है कि हम में शायद ये चीज डेवलप हो रही है, तो उसमें हमें काम करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप सभी तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी से मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और जितनी एनर्जी और जितने उत्साह के साथ हम आप सभी तक ये जानकारियां पहुंचाते हैं ना, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने आप को उतनी ही एनर्जी के साथ जागरूक करते होंगे और अपने जो आसपास के आपके करीबी लोग हैं उन तक भी आप ये सब जानकारियां पहुंचाते होंगे, क्योंकि हर कोई नहीं जान सकता है या नहीं उन तक ये जानकारी अगर पहुंच रही है, तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप उन तक ये जानकारी पहुंचाएं, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि किसी का भला करना ना, एक चेहरे पर मुस्कान, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो बस दिल को सुकून मिल जाता है कि नहीं कुछ तो अच्छा किया है। तो फिलहाल दोस्तों आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात। तो आइए और भी जानते हैं कि और किस किस तरह के डिसऑर्डर हमारे में पनपते हैं या जागृत होते हैं। तो मैम हमने अवॉइडेड की बात की और डिपेंडेंट की बात की और अभी हम बात करने वाले हैं OCPD जी। तो आइए बढ़ते हैं बातचीत में आगे और जानते हैं मैम से कि आखिर ये कौन सी बला है, कौन सा डिसऑर्डर है OCPD। तो मैम प्लीज हमारे दोस्तों को इसके बारे में बताइए।
1: देखिए OCPD का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
0: जी।
1: इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव। अधिकांश लोगों ने OCD टर्म सुना होगा और कुछ लोग जानते भी होंगे कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, पर ये जो डिसऑर्डर है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ ऑब्सेसिव और कंपल्सिवनेस के ट्रेट्स लेकर आता है। तो ये OCD नहीं है लेकिन ये OCPD है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ऑब्सेसिवनेस का मतलब होता है किसी एक चीज में अगर घुस गए तो घुस गए, और उससे बाहर आना या अपने अटेंशन को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना फिर हम एक व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ऑब्सेसिवनेस में हमें इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, मतलब हमें बार बार वही ख्याल आएगा कि हमें वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम सही से करना है, सही से करना है, सही से करना है। एक प्रकार से एक व्यक्ति एक प्रकार के सर्टेन लेवल ऑफ परफेक्शन से ऑपरेट करता है, यानी कि ऐसा मानिए कि जिन लोगों को परफेक्शनिज्म का कीड़ा है ना, उनको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है काफी आसानी से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करके चीजों को रखते हैं, बहुत साफ सफाई करके रखते हैं, और उनके इस प्रकार की चीजें

0: उनके सिर्फ घरों में ही नहीं, उनके काम में भी नजर आएगी।
1: बिल्कुल,
0: उनका ऑफिस डेस्क हो या फिर उनके कोई फाइल्स हो, या है ना, या फिर उनकी कोई प्रेजेंटेशन हो। यहाँ तक कि ऐसे में ना लोग, ये भी होता है कि वो अपने एंड गोल को अचीव ही नहीं कर पाते क्योंकि वो परफेक्शनिज्म में ही फंसे रह जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आता है बात कंपल्सिवनेस की। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाएगा, लेट्स से अगर बर्तन नहीं धुले हैं तो थोड़ी देर में धुल लेना, कोई बात नहीं
1: जी,
0: नहीं बर्तन तो अभी
1: धोने और अच्छे से धोने,
0: अच्छे से धोने, ये वो व्यक्ति होंगे जो, जिनके यहाँ पर अगर कोई मेड या हेल्पर काम करने आएंगी ना तो वो वहां पे खड़े होकर इंस्पेक्ट करेंगे कि सही से काम किया है कि नहीं, और वो उंगली से लगा लगा के देखेंगे, देखो यहाँ पे साबुन रह गया
1: जी।
0: और ये चीज इतनी ज्यादा होगी, इतनी एविडेंट होगी कि ये हर व्यक्ति को, उनके आसपास के जितने लोग हैं ना, उन सबको ये बात पता होगी कि दिस इज व्हाट ही और शी डज। तो यानी कि ये ऐसे ट्रेट्स होंगे, देखिए आम जीवन में भी हर व्यक्ति ऐसा करता ही है, एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति अपने हेल्पर के काम को इंस्पेक्ट करेगा, बताएगा दैट यू नीड टू इंप्रूव,
1: लेकिन हर टाइम सर पे खड़े रहना, हाँ, वो
0: पर हर टाइम, एवरी सिंगल टाइम, और सिर्फ हेल्पर के साथ ही नहीं, वो कोई भी व्यक्ति होगा ना जो उनका काम करने लगेगा, वो हर उस व्यक्ति को टोकेंगे और बताएंगे देखो ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। वो उनके अंदर एक्सपेक्टेशन होगी सामने वाले लोगों से परफेक्ट काम को अटेन करने की, और वहीं से उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस में, उनके सोशल रिलेशंस में चैलेंजेस स्टार्ट होंगे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो लोग होंगे जो लोग चप्पल अंदर कैसे आई घर के, बाहर की चप्पल बाहर ही रहनी थी, इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी और डेली होगी, ये नहीं कि वंस इन अ व्हाइल हुई, वो आम बात होती है, वो एक प्रकार का डिसिप्लिन सेट करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर बात होगी कि डेली डेली ही कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी ना किसी फैमिली मेंबर से, यहाँ तक कि बाहर वाले लोगों से भी हो सकता है। ऐसे लोगों का फियर यही रहता है कि हम जो एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाए, तो एक प्रकार की लो सेल्फ वर्थ रहती है, जिसको अटेन करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो परफेक्शनिज्म की वजह से पीछे पड़े रहते हैं उसी काम के ऊपर। वही परफेक्शनिज्म आगे चल के रिफ्लेक्ट होती है इन द सेंस ऑफ ऑब्सेसिवनेस इन देम, और कंपल्सिविटी एज इन कि अब ये करना है तो करना ही है, ये ठीक से नहीं हुआ तो मैं इसको सब कुछ हटा के स्टार्टिंग से फिर से करूंगा। और ये इतना टायरसम हो जाता है ऐसे लोगों के लिए कि अधिकांश समय पर वो अपने एंड गोल तक पहुंच नहीं पाते। तो ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ना ही सिर्फ अपने सोशल रिलेशंस के लिए बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनल लाइफ के लिए भी, क्योंकि वो अपने एंड गोल को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन अगेन दैट विल ओनली रिजल्ट इन लो सेल्फ वर्थ। तो ये एक लूप बन जाता है, और इस लूप से बाहर निकलने के लिए ही उनको फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। दैट इज द बिहेवियरल पैटर्न, दैट इज द पर्सनैलिटी।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बिहेवियर के साथ शायद हम खुद को भी हार्म, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि जब हमें चीजें मतलब जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल पाती तो हम लोगों को भी बातें सुनाते हैं, मतलब हर टाइम
0: तक कि अपने आप को, व्यक्ति इतना स्ट्रेस में चला जाता है वो रेस्ट नहीं करता,
1: रात को नींद
0: व्यक्ति को लगता है रेस्ट, मतलब वो कहते हैं ना कि आराम हराम है,
1: हराम।
0: ऐसे लोगों को ऐसा लगता है जब तक हमारा एंड गोल अचीव नहीं होगा तब तक हम रेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव नाउ बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट अटेनिंग दैट थिंग।
1: बिल्कुल, तो ये गए वही की ओवरथिंकिंग का पार्ट भी होता
0: है। ओवरथिंकिंग तो एक बहुत छोटा ट्रेट होगा, ओवरथिंकिंग है इसका ट्रेट, डिस्ट्रेस भी एक ट्रेट रहेगा,
1: मतलब इसके अंडर जो है फिर हमारे साथ बहुत ज्यादा चीजें होने के चांसेस हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जब हम
0: ऐसे में व्यक्ति ओवरथिंक भी करेगा,
1: स्ट्रेस में
0: भी रहेगा, अपने आप को रेस्ट नहीं देगा, उसके पर्सनल
1: रिलेशन
0: सब खराब होंगे, छोटी छोटी बातों पर फाइट्स हो रही होंगी, और उनके लिए वो छोटी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट होंगी कि वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे करके उनका लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा।
1: तो वो कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं? ट्रीटमेंट। बिल्कुल, तो लास्ट ऑप्शन दोस्तों देख लीजिए ट्रीटमेंट ही है, बाकी तो खैर हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, यहाँ तक पहुंचे ही ना,
0: यहाँ तक की रुचिका हमें लगता है आने वाले समय में हम लोगों को कुछ थेरेपीज और कुछ डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग दीज थिंग्स भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे जो ऑडियंस है उनको काफी मदद भी मिल सकती है।
1: बिल्कुल, ये मेन पार्ट है कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इन चीजों को, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से हमारे में जो एक तरह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फेस करते हैं, किस तरह से हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही बिहेवियर से अपने दुश्मन। देखिए लोगों को तो सुना है कि आजकल इंसान इंसान का दुश्मन है, लेकिन खुद खुद के दुश्मन है ये यहाँ से पता चल रहा है, छोटी छोटी बातें जो कि अक्सर हम नजरअंदाज करते जाते हैं।
0: हमारा खुद का बिहेवियरल पैटर्न या हमारा खुद का माइंड या हमारी खुद की आदतें हमारे ही फेवर में काम नहीं कर रही होती।
1: बिल्कुल, और जब हमें ऐसा लगता है ना कि हम ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें परफेक्शन के साथ, तो हमें तो ऐसा लग, और खुद को हमें ऐसा फील होता है कि नहीं हम बहुत सही हैं सोसाइटी की नजर से देखिए, क्योंकि हम हर चीज को परफेक्ट करते हैं पूरी परफेक्शन के साथ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और इसी के चलते फिर वो शायद अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं समझने के लिए और अपने बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही खास बातचीत आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने सुनी है, और मैम जाते जाते हमने ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है पूरा कंप्लीट किया है, तो इस पे आप थोड़ा सा अगर कुछ एक हमारे दोस्तों को इसमें कुछ बातें बताना चाहें शॉर्ट वे में।
0: देखिए हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को ना अपने भीतर झांकते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि हम कितनी इंटीग्रिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारे बिहेवियर आपस में कितने अलाइंड है। सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, यहाँ तक कि हमारा जीवन, हमारा लाइफस्टाइल कितना अलाइंड है, हमारे आसपास की जो रिलेशंस हैं वो उन रिलेशनशिप में हम जिनके साथ हम रिलेशन में हैं वो लोग कितने अलाइंड है, इस इंटीग्रिटी को चेक करते रहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके अंदर आपके जीवन में आपके सोच में या व्यवहार में किसी प्रकार का पैटर्न बनता नजर आ रहा है तो उस पैटर्न को तोड़ दें। ये तो समझिए एक मूल मंत्र है जीवन का, अपने ऊपर काम करना है, ग्रोथ के टूवर्ड्स आगे बढ़ना है और सुखी जीवन जीना है, तो समझिए कि जहाँ पैटर्न दिखेगा वहां से हमें बाहर आने के लिए जी जान लगा दीजिए, पर वो पैटर्न को तोड़ दीजिए, स्पेशली तब जब हमारा पैटर्न हमारे लिए ही हार्मफुल हो या हमारे आसपास के लोगों के लिए हार्मफुल हो। तो हमें सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, हमें अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। कई बार हमारे ही करे हुए काम की वजह से या हमारे व्यवहार की वजह से हम अपने आप को तो जस्टिफिकेशन दे देते हैं ना कि हाँ हमने ये महसूस किया इसलिए हमने ऐसा किया, हेंस आई एम नॉट सॉरी, पर आप ये देखिए कि उसका इम्पैक्ट सामने वाले के जीवन में क्या हो रहा है, और जब भी कोई भी पैटर्न नजर आए उसको ब्रेक करने का पूरा संभव प्रयास करें।
1: जी दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: प्रियशी को
1: कार्यक्रम संपन्न करने की। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज आप सभी के अपनेपन की।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: अपना वोट।
1: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018170191. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
2: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
3: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
4: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
5: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
2: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
4: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
6: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
2: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
7: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
8: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहां तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
9: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखो क्या हो गया।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों, मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो अहाँ जिड़ा गल बात करा देना कि तनाव जो किस प्रकार अहाँ जिड़े से दूर करी सकते मन दी जिड़ा गल्ला न तिना जो दवाना भी अहाँ वास्ते जरूरी नहीं है। अगर अहाँ अपने मने दियाँ जिड़ा गल्ला न खुद अंदर रख देना तो सभी अहाँ जो कुछ ना कुछ परेशान जिड़े से जरूर कर दिया न चाहे से अहाँ का दोस्त है चाहे से अहाँ का भाई बहन है अहाँ तिना कने अपनी जिड़ा मने दियाँ गल्ला न तिना जो साझा जिड़े से जरूर करी सकते जैलू अहाँ तिना कने अपनी गल्ला साझा करते न तो कुछ ना कुछ अहाँ का जिड़ा मन है से हल्का जरूर जिड़े से होंदा है कने अहाँ जो अच्छा जिड़ा फील है से जरूर होंदा है। कई बार अहाँ कल दे पिछे भी आज जो बेहतर जिड़े से नहीं बनाई पाते न तो कल जो छड़ी करी अगर अहाँ आज जो बेहतर बनाते न तो बड़ी अच्छी गल है। तो अशोता चलते चलते गीत तुह तक पहुँचाते न
1: आया बेसुर

तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोष रशिकन है। तो सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। समय के अनुसार अगर हम गलबात करना तो बड़ा अच्छा लगता है, कने समय के अनुसार इजाजत लेना भी अहां वास्ते जरूरी है। तो कार्यक्रम का जोड़ा समय है से अहां जो हूँ बोला था कि तुह अनुमति जोड़ा से ले लिया, क्योंकि तुहदा जोड़ा समय है से हूँ पूरा आंदा है। तुहदी जोड़ा गलबात है से जरूर पूरी हुई होनी है, कने जोड़ा तुह दियाँ फरमाइशा न जितने भी श्रोता न तिना तक अहां पहुँचाइया, कने तुह जरूर इस सफर जो इंजॉय भी किया। तो समय अनुसार तुह सारी ही अपनी रेडियो दोष शशि जो दिया अनुमति, कने हमेशा क्या करना है, हमेशा चेहरे की जोड़ा समाइल है ना से फीकी नहीं रखनी है, चेहरे की समाइल हमेशा कायम रखनी है। कने तुह रेडियो गुंजन धर्मशाला जोड़े से गुनगुनाते रहा, कने फिर ते अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं।
9: फिर
8: क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हो गया क्या हो गया?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा, तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं।
9: फिर
8: क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ देखो क्या हो गया।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर हो चुका हूँ तुम्हारा अपना कार्यक्रम लेकर हक नो एपिसोड लेकर इंदी अपनी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ, सभी होने वाले रहा, सभी श्रोता गण रहा और जितने भी इन दादे मन उन त्यारे सभी रहो तहे दिल तो स्वागत करनो, हार्दिक अभिनंदन करनो। हाँ, जितने भी इन दे श्रोता हिन जो यह कम्युनिटी जो प्यार कर दे हिन, जो है कम्युनिटी सोगी यह बोली सोगी लगाव रख दे हिन, यह बोली जो प्यार कर दे हिन त्यारा भी सभी रहा बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी। कैसे तो ये सब उम्मीद कर लो कि सब खरे भुने कुशल मंगल भुने और अपने घरे खुश तंदुरुस्त भुने हिन, है ना। तो चलिए जी, कार्यक्रम मंच सभी पहले था आगाज़ किए सो बुंदा। आज 9 ते दत्ते 10 तरीक का हिन छोतो और दत्ते की आसो मदर्स डे हा, यानी कि मोरा दिन हा जी। बिल्कुल हर दिन मोरा बुंदा वैसे था, लेकिन एक खास दिन किया सोरख रो बुंदा मोआ वास्ते, है ना। वैसे हर दिन खास दिन बुंदा मोआ वास्ते, है ना। लेकिन दत्ते किया सो त्वारा तो दत्ते इंदी बुंदी है छुट्टी। ता आज असु ये एपिसोड लेना हा शतो और आऊँ तो पहले बोलूँ तो कि वैसे हर दिन किया सो मोरा दिन बुंदा हा, लेकिन ये दिन कतियों में मनंदन है भी तो जरूर दस ले सकता हूँ। 10 मई जो मनंदन मातृ दिवस मई वे मई में इंदा सकता हूँ। ये दिन माता वे प्रति प्यार सम्मान और आभार व्यक्त करने वास्ते किया सो मनाए गंदा सकता हूँ। भारत सहित अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में किया 10 मई जो किया सो दत्ते किया सो मदर्स डे किया सो मनाए गंदा हा सकता हूँ। मात्र दिवस किया सो मनाए गंदा हा जी। बिल्कुल श्रोता हूँ तो सब बंडों ने समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी और मातृ दिवस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोआ जो प्यार ना करदा बुआ, मोआ रे देखभाल ना करदा बुआ। और मुझे लगता अगर दुनिया में श्रोता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति हा जो प्यार करता हा, देखभाल करता हा, केयर करता हा, त्याग करता हा, स्नेह करता हा और अपनी सीमा जो पार करी करी भी, अपनी सीमाओं जो पार करी करी भी क्या है जो प्यार करता हा सो आमा श्रोता, है ना। अहम मातृ दिवस माता रे अविश्वसनीय योगदान और निस्वार्थ प्रेम रे सम्मान और सम्मान वास्ते किया सो मनंदे हिन शोतो। ये दिन माता वास्ते दीदी नानी और माँ सम्मान अन्य महिला वे त्याग और पालन पोषण रे स्वभाव जो स्वीकार करने वास्ते किया सो मनंदे हिन। और शोतो बहुत सारी गलन वैसे ता मातृ दिवस दोते हा, लेकिन मैं तो सोदा सुखी दत्ते इन दे लाइव कार्यक्रम में किया सो छुट्टी रहने ठहरे करे आज है क्या सो चर्चा करूँ कर दिन। बहरहाल इन दे श्रोतागण असुखी कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, ठीक ठाक ना।
1: हाँ जी सर जी, तुसा ठीक ठाक सर जी।
0: बढ़िया जी बढ़िया। और किना किना मौसम तुंदी किनारी?
1: मौसम सर जी आज बदोखा ही था सर जी, बदोखी तो।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: इस बारी आमरे किया सो बड़े नए नए खेल खेल रहे, है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी, बुरा हाल हो गया सर जी।
0: हाँ जी, बहुत ज्यादा मुश्किल बंदा है ना जी।
1: मुश्किल होंगी सर जी, क्योंकि इस टाइम बढ़ाइए काम चल रहे सर जी, कणक दे कोई आलमा पुट्टा दे
0: जी।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी,
0: काफी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं।
1: बड़ी मुश्किल।
0: चले जी, क्या कर ही सकते ना, जस प्रकार हो गए किया सो रचना रच रही है भगवान ने तिया ही
1: किया सो खेल। भगवान ने सर जी। हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: हाँ जी, तिया ही खेल के ना सो खेले खेल लिखाने ना।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: इंसान ना है तो सिर्फ प्रयास कर ही सकते ना जी।
1: हाँ जी सर जी।
0: जी जी जनाब, तो देरा किनारी धूप तो दसो कि आज बदला बदला रहे हो काफी मौसम, है ना जी।
1: हाँ जी सर जी।
0: चलिए जी, होप सो कि मौसम ठीक बो, कणका जो कटना दिया गाना दिया
1: और क्या सर जी,
0: ये उम्मीद कर सकते
1: मेहनत
0: हैं
1: तो होती ना सर जी किसाना दी सर जी। हाँ
0: काफी ज्यादा, काफी ज्यादा
1: जी काफी ज्यादा। हाँ
0: जी।
1: जी सर जी
0: जी जनाब, तो आज इस कार्यक्रम में कुंडन गीत होना तो है चाहते हैं, कुंडन गीत ब्रॉडकास्ट कराना चाहते हैं।
1: एक गाना थोड़ा मैं गुनगुनाए भी दिंदा सर जी, गाई भी दिंदा,
0: हाँ
1: एक
0: बिल्कुल
1: करनैल राणा जी का गाना सर जी। हेलो
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल गुनगुना जी। तो
1: सोनी लिया मानु मां मिट्टी दे खलोनिया, सोनी लिया मानु मिट्टी दे खलोनिया, एक दिन टूटी जाना तू, एक दिन बजी जाना तू, ओ एक दिन टूटी जाना तू, सुनी लिया मां मिट्टी दे खलोनिया, एक दिन टूटी जाना तू, एक दिन बजी जाना तू,
0: क्या बात है जी, क्या बात है।
1: रिश्तेदार तेरे हैं तो सपना, रिश्ते तो नाते तेरे हैं एक सपना, झूठे हैं लोकी सारे कोई भी नहीं अपना, एक दिन कर ले जाना तू, एक दिन पर जी जाना तू, ओ एक दिन टूटी जाना तू। गाना सर जी सुनाई नहीं।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर जरूर
1: लोग
0: सुना
1: कहते
0: दे।
1: हैं कि है।

0: क्रीम स्पेनलेस।
1: ठीक है जी, धन्यवाद। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून को रो और कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपने का पगन सो बिल्कुल लाइव चल रही है। इस लाइव कार्यक्रम में श्रोता तो ऐसा भी जुड़ सकते हैं 7088809 पर। तैया जी समय पर अपने आप जो पहचानना और तनाव रहे लक्षण पहचानना ये बहुत ज़रूरी है। इवन कि आज जाऊँ आपको डॉक्टर ले कुछ रो तो मुझे पूछो दे थी भाई साहब तू है तनाव तो नहीं लेंदे ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है फैमिली में कौन कौन आके या ये मतलब आजकल ऐसा कुछ दौर बनी कुछ रहा ऐसा कुछ समा के ऐसा बनी कुछ रहा कि हर दूजे इंसान जो किया सो स्ट्रेस है हर दूजे इंसान जो किया सो तनाव और तनाव में किया सो यह बहुत कुछ श्रोताओं बहुत कुछ किया अपने शरीर और नुकसान पर जन्मदिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार तनाव रे लक्षण क्या क्या ना ये आऊँ आपू भी चाहूँ कि इसी वो पढ़ूँ तो ज़रूर तू सब भी तकरे ये चीज़ ज़रूर पूछने हाँ। बहरहाल जी चल दिन और आगाज कर दिन कार्यक्रम का कजो कि मातृ दिवस दोते तो आज है आज थोड़ा इसी हम मनाओ कर दें दसो कर दें मनु जो लेकिन फिलहाल लेकर चल दें तू सब भी जो इस प्यारे दे गीतारी कनारी ये हिंदी माता जी वो बड़ा पसंद है गीत बड़ा पसंद नहीं है लेकिन होड़ने माँ मस्त लगता खरा लगता तो आज आगाज किया सो इस गीत दसो की कर दें शो बने दे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने बन रहे और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सोगी बन रहे।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा करना सो इन द वीडियो सेट मकिया सो चलो रही तो चलिए जी कार्यक्रम जो हागो बढ़ंदन श्रोताओं और तो सब श्रोता छू की जरूर जुड़ी सकते हैं इस लाइव कार्यक्रम में 7081 8 8 7 0 9 8 पर कॉल करे करे नंबर एक मौके फिर वास्ते वास्ते बोलो 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं और कॉल करे करे अपना पसंदीदा गीत अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो जरूर साझा कर सकते हैं यह गलार खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया सो जरूर जरूर जरूर दसने लायक बुआ तो चलिए चल देन और हिंदे अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हैं पूछ देन कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन नमस्ते जी
1: नमस्ते बाजी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: और ठीक ठाक
0: बहुत बढ़िया जी कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन
1: हाँ जी बरमोर तो फील्ड जब बचाए थों बोलूं देन छबी राम
0: क्या बात है बरमोर थों जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा किना बरमोर रा मौसम हवा चल रही मुझे लगता
1: कणक हां तो तुम दिखना रिकॉर्ड कर काम हो
0: हां जी हां जी
1: हां जी
0: ए तो मनु चाहूं दे कि बरखा ही ना बुआ
1: सही ना सारा रे ना कण का काम पेगा एरा जमीन बाणिया आवे अपने अपने सब बे सब नी जरूरत है ना
0: बिल्कुल अपने अपने सब बे सब भी जरूरत है
1: हां जी हां जी
0: ठीक बल्लू कर देन तो है पर चलो उपराले में उपराले की असो सब भी रहे ना जी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कुंडले गीत
1: बबलू ग्रामवासी रहो ना जी नागली लरा
0: अच्छा बबलू ग्रामवासी रहा आ कुंडले ने दसो जी
1: नागलीला जी नागलीला
0: नागलीला
1: हां जी
0: क्या बात है तो ये फरियाद करूं दे बुने की बरखा बुआ है ना
1: फरियाद करना है बहन दिया जरूर तो बड़े ना बक्सर लेके दो थोड़ी बाने ना हां
0: हां
1: जी
0: ठीक है जनाब जी धन्यवाद
1: ठीक है बाजी जी
0: FM मैन 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सोगी हुण कर देन हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट में तो तनाव जो हम अगर आऊँ गल करूँ तो आम मनु क्या सो तनाव जो महसूस ही ना करे बंदे तिन्यो पता नहीं कि तनाव भी कोई चीज़ आ तिन्यो पता नहीं कि टेंशन भी कोई चीज़ आ तिन्यो छोटे छोटे गल्ला रे केयर करना हर किसी भी छोटी छोटी गल्ला भी छुपाना या बड़ी ज़्यादा केयर करना तेन पता नहीं कि ये भी आख प्रकार रह गया सो तनाव हर किसी के बारे गल करना ये भी आख तनाव जी बिल्कुल छोटा तनाव जो यह आम सोचन दिन की तनाव की आम गल और ये मन नहीं करे यह तनाव जो कि है सो टाली दें इन शतों कभी कभी ये भी ना समझ पाते कि जो स्वास्थ्य या व्यवहार थों जुड़ रही समस्या यह झेलू करते हैं ठेरा कारण भी किया सो स्ट्रेस ही आ इतना ही ना श्रोताओं तनाव रे लक्षण जो समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है इन दे अगले श्रोता सूगी फिलहाल कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन नमस्ते जी
2: हेलो नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
2: आप हमारी फरमाइश का एक गाना सुना दो सर
0: हाँ जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन जी
2: हाँ जी
0: कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन जी
2: आसे वाली कौन चंबे हो
0: चंबे हो
2: चंबे हो
0: चंबे कस ग्राम हो बल्लू दिन
2: चंबे ग्राम ग्राम मुकलैनी
0: हाँ जी
2: ग्राम मुकलैनी
0: मुकलै
2: ग्राम मुकलैनी है जी पोस्ट ऑफिस बढ़िया कोठी है
0: क्या बात है। चलो ठीक है जी, कुंडन की थोड़ा तुसु
2: असे सुनना चाहते जनाब अक्ता सुनना तू साए साए मत चल रहा दिए।
0: अच्छा
2: मुझे तेरे डर लगता।
0: क्या बात है।
2: हाँ जी
0: ठीक है जी, ये गीत तो तुसु जरूर होने लगा है।
2: क्या कहने जनाब कस दे। अच्छा
0: कस दे। चलो
2: अच्छा आजी
0: जी जी बिल्कुल अच्छी बंदी फरमाइश पूरी।
2: आकी आकी फरमाइश जनाब की आको और तेरे बाद आको और दी सकते
0: ना जनाब जी। आकी फरमाइश बंदी पूरी।
2: चलो ठीक है जी।
0: आकी दिन आकी बंदी जी।
2: ठीक है जी। ठीक है ओके
0: जी।
2: थैंक यू जी।
0: थैंक यू जी। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहे और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही हैं। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं और इंदे अगले श्रोता सुगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
3: नमस्कार। नमस्ते
0: नमस्ते जी। नमस्ते जी ठीक ठाक ना
3: जी?
0: और कर करे लुग रहे
3: कोई खास विशेष नहीं है जी, सब अच्छा है जी।
0: अच्छा।
3: आप लोगों का आशीर्वाद है और क्या चाहिए, सब आपका जो सम्मान मिलता है इससे खुश हो जाते हैं काफी हमारे लिए। ये भी हमारे एक सम्मान है जो आप हमें समय देते हैं ना
0: जी,
3: ये भी एक सम्मान है हमारे लिए, सम्मान है हमारे लिए
0: जी जी जी।
3: तो सचिन जी आज मैं एक बात आपको बताऊंगा, बहुत जरूरी है अहम बात
0: जी।
3: शायद आप पिछले कल भी आप कुछ मैच के बारे में बता रहे थे यहाँ पर आईपीएल के बारे में
0: जी,
3: तो मैं उसके संबंधित आपसे कुछ जानकारियाँ साझा करना चाहता हूँ आपके मन से
0: जी।
3: और जानकारियाँ बड़ी अहम है, मतलब एक समाज के लिए बड़ी चीज है
0: जी।
3: देखिए जब हम बोलते हैं कि देश सबका है, मोदी जी का तो नहीं है सबका ना, मोदी जी हमारे से एक सामान्य नागरिक है, पर ये कि वो एक सामान्य बात को उठाते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं वो
0: जी।
3: हमने देखो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि स्वच्छ भारत बोला था ना,
0: बिल्कुल।
3: तो जब स्वच्छ भारत की बात आती है तो सबसे पहले तो हम ये लेते हैं कि हमारे पास आज इतने साल आईपीएल होते हुए 2010 से आईपीएल हो रहे हैं
0: जी,
3: ठीक है। आज तक मैं आपके मन से बोलने का ये मेरा तात्पर्य है कि आप सब लोगों को ये असर हो, वो जो सब जितने भी अधिकारी लोग सुने
0: जी,
3: और जो पॉलिटिशियन है वो जो राजनीतिक है वो सुने कि हमने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया
0: जी जी।
3: देखिए उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूरिन की प्रॉब्लम बिल्कुल समस्या एज इट इज ही है वो आज भी, वो जो लोगों को ना हो तो पेशाब करने की जगह है ना वो अंदर बाहर जाने के लिए लैट्रिन करने के लिए कुछ जगह है। इतने मतलब यहाँ पर जो कारीगर और जो मजदूर जो बाहर की चीजों से आ रखे हैं, कुछ टेंटर रखे हैं, कारपेंटर रखे हैं, उनको आज की तिथि में डेट में कोई भी उन लोगों को लिए सुविधा नहीं है। आज भी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे हम लोगों को सुबह सुबह कि यहाँ पर लैट्रिन जाने के लिए जगह कौन सी है, ये बदीगर जाने के लिए जगह बताइए, कोई शौचालय बताइए। तो हम लोगों ने अब कोई शेयर करके राजी नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन तो कुछ शेयर करेगा नहीं, तो हमने उनको ये बोला जंगल में चले जाओ। अब यही एक विकल्प है, अभी बताइए कि ये उचित है अनुचित है हमें बताइए, साथ साथ जवाब देते जाइए आप
0: जी जी।
3: ये बात उचित है नहीं है, मतलब इतने साल हो गए आईपीएल का ग्राउंड हम पंजाब में उठे, हमें क्या उस पैसे से हमें कोई फायदा है नहीं है नुकसान है, हमें क्या एक यूरिन की जो मेन प्रॉब्लम है यही है ना। अब कोई भी आदमी आएगा तो बाहर से आदमी आएगा तो कहाँ जाएगा, वो पेशाब करने के लिए कहाँ जाएगा, एक मामूली बात है पेशाब करना तो बाहर खड़ा हो जाएगा लेट्रिन कहाँ जाएगा, वो शौचालय नहीं वो कहाँ जाएगा, शुरू शौचालय चाहिए चाहिए, बेसिक नीड है,
0: बेसिक
3: बेसिक है ना। जो गलत मैंने को गलत नहीं, गलत उसको नहीं बोला आपके मन से, अगर गलत का बता दीजिएगा मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नेता जी, एमसी आले हो और प्रशासन जो कि ऐसा सोचना चाहिए इस बारे अंदर ना जी, और इवन की एचपीसी आले हो भी इस बारे की सोचना चाहिए कि इधर काम चल रहा था, अगर जो लेबर है सुकड़ी गिच करी कि ऐसा अपने आप जो
3: हम बोलते हैं कि अगर मैं लोन देती हूँ तो पैसे से लोन देती हूँ, उस पैसे से 4 यूरो बना दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि लोग जंगल में ना जाए, जो बाहर के जो कारीगर है जंगलों में ना भागे, इधर खुले आज रही नहीं है, पानी जगह जगह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे लोग
0: जी,
3: मुझे बताइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: बाहर से जो लोग आएंगे उनको पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है, है? तो पानी के लिए 4 टंकियां रखवा दो, है इसलिए लोग हजारों लोग आएंगे, पैसे तो बहुत मांग रहे हैं, तो पानी के लिए 4 टंकी नहीं रखवा सकते, है फायदा ये बताइए मुझे, गर्मी के दिन है पानी कहाँ पियेंगे लोग। वहाँ देखो जो नंबर जैसे मान लो कि वहाँ गेट भी है, जो बड़े बड़े गेट लगा रखे हैं नंबर 1।

0: गेट, नंबर 2 पर गेट, वहाँ पर रेडियां लगा रहा है, रेडियां हटा दी हैं, रेडियां वहाँ से हटा दी हैं, चलो माना कि सिक्योरिटी बेसिस है, हटा दिए, तो लोग जो रेडी वाले हैं वो कोई चौक है यहाँ पर, उससे लोगों को लगा दिए भी आपको वहाँ लगा दो। अब लोग तो वहाँ रेडी लगा दी, अब लोकल लोगों को दिक्कत, वहाँ पर रास्ता रहा ही नहीं बिल्कुल ही, ये भी दिक्कत है। वहाँ पर साथ में एक मंदिर है, जब लोग मंदिर में श्रद्धालु आते हैं तो उन लोगों को पूजा करने के लिए दिक्कत होता है, ये बताइए मुझे। लोग जैसे उन रेडी वाले चाय बेचेंगे, वो जगह जो मक्खी बैठती हैं, है? कोई चाय लेकर कोई इधर फेंक रहा, कोई कप फेंक रहा, कोई कचरा पड़ेगा तो गंदगी होगी नहीं होगी,
1: बिल्कुल।
0: शौचालय या स्वच्छ भारत कहाँ गया वो, मुझे बताइए।
1: ये बिल्कुल तो है जी,
0: नहीं है
1: एमसी ऑफिस में या फिर अपने जो तुंदे वार्ड रे मेंबर हैं या फिर जो तुंदे काउंसलर हैं, है ना जी, खेल
0: हाँ जी
1: परिसर आई थिंक तुंदा चलिंदा है, है ना, जरूरत इन होगी कि या सो इस बारे डिस्कस करा तेरे ध्यान में, इस मंच था उन तो है बड़े सारे मनु रे ध्यान में किया, सो ये गल पाया सेकेंड सैटरडे छुट्टी भी है कई कि सो सरकारी जो कर्मचारी सो भी होने कर दे बुने अग मौके तो है अपने जो काउंसलर हिन तीन तक भी किया, सो ये गल तो है
0: सो
1: जरूर
0: गया
1: पहुँचाई
0: सर,
1: दे, है ना जी।
0: सो गया
1: तो तीन उठाना
0: रियली।
1: आत्मो के जरूर एक गलती
0: अभी
1: है
0: कल
1: तगर भाई।
0: परसों बता रहे थे कि इलेक्शन आए तो वोट किसको, मैं सुन रहा था है ना, इन लोगों को हम वोट देंगे जो लोग सो जाएंगे ना, वोट देंगे सो जाएंगे, वोट
1: जी
0: रहेंगे बाद में सो जाएंगे, नोबडी बदर कि देश में क्या हो रहा है, बस इतना कि हमारा समझ होता है। वोट दिया हमारी कदर वोट देने के देने तक होती है, जब तक वोट ना दिए तो बिजनेस है, वोट दे दिए फिर हम लोगों को प्रणाम करेंगे। हम
1: जी
0: मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि हम आजाद हो गए, कहाँ से आजाद हो गए, ये तो मानसिक हमारी मानसिकता के दिवाली पर है।
1: सोचता हूँ आजाद होना बड़ा जरूरी है। चलिए ठीक है जी, समय रहा थोड़ा करिए अभाव है तो
0: जब तो
1: सुबह
0: जागेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं होगा। मैं
1: बिल्कुल
0: आज भी कहीं देख रहा था कुछ ढेरा की न्यूज थी, तो वहां पर एक ढेरा के पास एक जगह है, वो जगह है वहां पर आज भी ना तो पुल है ना सड़क है, आज हमें 77 साल आजाद हुए होंगे, तो वहां के जो औरतें महिलाएं वो सब उसके लिए पूरे भी ना तो है हमारे सड़क है, हमें बोला आज पता नहीं किलो कितने किलोमीटर जहाँ पर ब्यास और देहरा में ब्यास नदी पड़ती है, तो वहाँ के लोग मतलब पैदल चल के जाते हैं, ना तो उनके मतलब लड़की छोटी बच्ची बोली ना तो स्कूल जाना हो तो इतने दूर घूम के जाना पड़ता बोला, बोला कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर, वो हम बोलते हैं हम आजाद हो गए, कहाँ से आजादी है
1: बिल्कुल
0: उन
1: बिल्कुल
0: लोगों के लिए, तो पूछे जिनके लिए मतलब अस्पताल हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है।
1: जी ठीक है जी, धन्यवाद, समय में थोड़ा करिए अभाव, नमस्ते जी,
0: ठीक
1: तुम्हें
0: है
1: सब भी
0: धन्यवाद,
1: गल्ला
0: बहुत
1: होना
0: धन्यवाद
1: जी
0: समय देने के लिए।
1: जी बहुत जागरूक और जागरूक इंसान निश्चित हो, और चलो एक मंच है कि इस मंच के माध्यम तो किया सो है अपनी गल्ला के ने सो रखी ने अनिल जी ने खेल पविसर वे इलाके तो किया सो इंदे हिन, और बड़ी अच्छी गल है मनने वाली गल है कि चलो ये तस प्रकार होगी किया सो जागरूक न और जनता जो भी किया सो जागरूक कर दे हिन। तो बहरहाल अब चल दिन थोड़ा करिए और हगूँ और कार्यक्रम मंच होता हूँ तो सो थोड़ा करे आगू बढ़न दिन और हुनन दिन प्यारे दे गीत बने रहे तो सब आर जैसे सचिन कपूर सो गीत।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वीडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा के नए सो चल रहे हैं और बहुत ही प्यारे दे गीत के सो तो हूँ श्रोतो बबलू ग्रामवासी बबलूरी आवास में तो चलिए श्रोतो बहुत सारी चर्चा पर है विषय पर चर्चा करू कर देती है तनाव भी गल की है सो है करू कर देती है श्रोतो शारीरिक बदलाव तो जुड़ रहे बंदे ने लक्षण तेरे जी बिल्कुल शतो ऐ सोचते ना कि कई कारण बंदे ने शतो तनाव रहे कभी फैमिली प्रॉब्लम बंदे हा कभी स्ट्रेस के सो फैमिली प्रॉब्लम की वजह तो बुझगंदा कभी जड़ तो है काम कर दें तड़ी कुछ तस हिसाब रहा खम हुआ या फिर तस हिसाब रहा इन्वायरमेंट हुआ ताँबे किया सो स्ट्रेस इंसान जो बुझगंदा हा और अन्य ऐसे बहुत सारे कारण हिन स्ट्रेस भूने रहे और इति सोगे सोगे श्रोतो आऊँ दसना चाहता शारीरिक बदलाव तो जुड़े बंदे लक्षण तनाव जो आम तौर पर किया सो मन मस्तिष्क मन और मस्तिष्क थो किया सो जुड़ी समस्या किया सो मन निगंदा है ऐसा माँ ऐसे माँ श्रोतो ठेरी वजह तो बुने वाले शारीरिक बदलाव पर ध्यान ही नहीं गंदा है लेकिन शारीरिक शरीर पर किया श्रोतो सो दिखने वाले लक्षण भी के सो तनाव रहे मतलब इंदेहिन संकेत इंदेहिन थकान क्या क्या संकेत होंगे ना थकान सिर दर्द गर्दन और कंधे भी जकड़न महसूस भूना है ना और निंदर ना ईना स्किन मंज दिक्कत भूना इस तरीके की चीज़ें कैन सो भूंदेहिन चलिए कार्यक्रम तो ये सब हूँ करते हैं आरजे सचिन कपूर सोगी और बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर घुटने भी दर्द भी किया सो समस्या आम बहुत छो रही आजकल है ना हर किसी हर दूजे व्यक्ति हो गया सो घुटने में दर्द है श्रोतो और क्या तो है सोच रहा श्रोतो कि गौट दे इन द मुँह हुकरा हुकरा बुंदा एक आयो बुंदा एक क्या ठेरे लक्षण ये भी तो सुह है ज़रूर दस लै पर हल इन दे भाइये करनैल राणा जी री फरमाइश करी थी सो फरमाइश में लिटरली थोड़ी करी तोपी बया पर असू मोले ने चली जी फिलहाल करनैल राणा जी वह तुसु इंदे भाई कैन सो दे रहा थो तिन्या हूँ ना तू गीत ता तेरी आवाज़ में थू तो सोता ना मुड़ू लेकिन एक गीत और तस गीता जो कि सो तुसु तक रह जरूर पहुँचन देन तो सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंचन धर्मशाला सो के और कार्यक्रम हूँ कर देने इंदी अपनी गप्पा एफएम बैंड 91.2 MHz पर

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला दो है सभी ट्यून गुर्र और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही तो इस कार्यक्रम में श्रोतों तो है भी जुड़ी सकते हैं 7088879 पर नंबर आख मौके फेरे और तुम होगी शेयर करनो हाँ 7088879 पर तो है अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं और अपने क्षेत्र की जानकारी है वो भी साझा कर सकते हैं। बहरहाल धर्मशाला बहुत मोटे इंटरनेशनल स्तर पर किया सेवना और आईपीएल जिन्हें मुकाबले भी मेज़बानी किया सो कर दहा लेकिन थोड़ा हाल बेहाल किया सो नज़र इच्छू कर दहा शोतुन स्मार्ट सिटी रह स्मार्ट सिटी में डस्टबिन रे बाहर किया सो गंदगी फैल रही है शो तो आईपीएल तो पहले नगर निगम री सफाई व्यवस्था पर उठना लगे ना वह सवाल गंदगी था धर्मशाला री छवि किया सो खराब हो चुकर दे है शो तो सोमवार तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल मुकाबले व आगाज किया सो बुच्चू करता है। देश विदेश में खिलाड़ी अधिकारी और हजारों क्रिकेट प्रेमी के ने सो धर्मशाला पुजू करते हैं लेकिन मैच तो पहले शहर री सफाई व्यवस्था पर किया सो सवाल उठना लगे इन शोतों खासकर स्टेडियम और टीमों रे जो टीम त्यारी दिन में तथिया ही लगाना जो मुख्य मार्ग तड़ी कई स्थान पर किया सो डस्टबिन

बाहर गंदगी किया सो फैल रही है सो तो स्मार्ट सिटी वे दावे के न सुतरी त्यारे दावे रे पोल किए सो खुल दी नजर इच्छू कर दिया। धर्मशाला थू दाड़ी कंडी मार्ग और स्टेडियम री और थू गाने वाले अन्य प्रमुख वास्ते पर किए सो जगह जगह अंडरग्राउंड डस्टबिन रे बाहर कूड़े रे ढेर किया सो हुजू करता हा। कई स्थान पर किया सो मनु द्वारा खुले माई किया सो कचरा कचरा के आसो फेंकू कर दे हिन और तस कचरे थों के ऐशो थों सो बदबू फैलू कर दे गंदगी रहा माहौल किया सो बनू करता जा थों स्थानीय मनु और पर्यटक जो भी करकन कर का परेशानी किया सो झेलना पे कर दे और परेशानी रहा सामना किया सो करना पे करता है। सो थों आईपीएल जिन्हें बड़े आयोजन रहे दौरान स्थिति शहर री छवि जो कि ऐसो प्रभावित करू कर दे हा। नगर निगम री और थों शहर रहे 17 वार्ड में गया डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था किया सो भुचूरे हा। सो थों घर दुकाना होटल और अन्य संस्थान था किया सो नियमित रूप था कचरा संग्रहण भी किया सो बच्चों करता है। लेकिन इतों बावजूद कई मनो कह रहे हैं सो सार्वजनिक स्थान और डस्टबिन वे आसपास कूड़ा फेंकू करते हैं। शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे वे बावजूद गंदगी किया सो फैलाने वाले कि ऐसो ना पकड़े करते हैं और गंदगी फैलाने वाले शख्स पर कि ऐसो कार्रवाई बुना चिंदे है। सो तो क्योंकि स्थानीय मनु रहा भी बोलना है कि जहने धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाऊ करता और आईपीएल जी ने बड़े मुकाबले भी मेजबानी करू करता तहने सफाई व्यवस्था और शहरी सुंदरता बनाए रखना भी प्रशासन और आम मनु दोनों भी किया सो जिम्मेदारी है। मनु जो नगर निगम रहे डस्टबिन त्यारे आसपास नियमित सफाई और नियम तोड़ने वाले कार्रवाई किए सो मांग करूँ कर दिन की जो नेम तोड़ू कर दिन जिन्हें पर कार्रवाई हुआ और आसपास के ऐसा पे गंदगी ना फैलान। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही न और तो ये बन रहे ना आज सचिन कपूर सो की हिंदी अपनी गप्पा जो हूँ कर दे। चलिए जी धर्मा खेरी कचहरी इनते हरदीप जी रेगुलर लिसनर हिन और तिन्हे तैड़ी देती थी लेकिन मात्र 21 मिनट अंदर है सो वो सकता तीन जो संतुष्ट ना कर पाए बून कुछ कि त्यारा गीत तो चलिए इस गीत था मुझे याद आए मुझे याद आया कि त्यारी फरमाइश भी अधूरी थी तो यह फरमाइश जो भी है पूरी करी दिन देन और धर्मा खेरी कचहरी ताई बल देने सोतों कि क्या खरे बूने छीन देने करम कजो कि धर्मराज री कचहरी के न सो लगनी और फिर तड़ी जवाब देना गया सो मुश्किल बचगाना गरिंद है कर्म के न सो खराब हुआ है। हर टाइम कसकीरी बुराई करना हर टाइम कसकीरे बारे बुरा सोचना हर टाइम कसकी कुछ बोलना ठीक ना बनता है सो तो सो अपने वास्ते जिया अपने अपने वास्ते जिया और खुश रहा इतों तुंदे कर्म के न सो खरे रह सकते न।

0: श्रोता हूँ सचिन कपूर अवे ले लेनो तुसु सभी थो इजाजत और गंदे गंदे बस ये बोलना चाहनो हिंदे श्रोता असुगी कनेक्टेड हिन ये बोलना चाहनो। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन।
1: हेलो।
0: हाँ जी कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन जी।
1: मैं पायल धर्मशाला को
0: पायल जी टाइम बची गो माफ़ करा चंद सेकंड बची ने इजाजत लेने वास्ते है ना जी। धन्यवाद धन्यवाद। श्रोता हूँ सचिन कपूर ले लेनो तो सुथ इजाजत दते बिल्कुल मम्मी वा दिन हा हर दिन वैसे मम्मी रे बंदा माता रे बंदा लेकिन बंदे न कि मौ वास्ते कुछ बलना बड़ा मुश्किल बंदा को जो कि अगर रूर आ रिश्ता किया सो मोआ सोगे बंदा हा गहराई रूरी गहराई रा रिश्ता किया सो मोआ सोगे बंदा हा शोतो चोट आसू लग दिया था दर्द किया सो मोआ जो बंदा हा शोतो मोरी दुआ रा क्या ना दीना आसू सारे ता मतलब सारा हाथ कहले मुंडा मिटे फिर एक अच्छा था मुकद्दर किया सो सुतुरा मुकद्दर किया सो जागे गंदा हा शोतो इन शब्द था सचिन कपूर तो सुथों ले लेनो इजाजत श्रोताओं और करा इंजॉय तो है कार्यक्रम रागला ये प्रोग्राम। फिलहाल हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे और रेडी गुंजन में सचिन कपूर जो हूं दे रहे मूल देन श्रोताओं छिए थो आठ। नमस्ते धर्मशाला।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है,
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
3: सिंपल में तो फिर,
1: अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
4: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
4: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
4: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
5: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल भर्ती हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया।

नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं।

पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: My name is Anthony Gonsalves.

0: कॉलोनी नंबर 420।
1: ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और श्रोताओं आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नमस्कार श्रोतों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं, होप्स हो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में खुश रह रहे होंगे। मैं आपका अपना आरजे सचिन कपूर स्वागत करता हूं आप सभी का, अभिनंदन करता हूं आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो स्वागतम और अभिनंदन, तहे दिल से स्वागत है सभी का गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोतों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आप तक स्थानीय जानकारियां जो हैं वो पहुंचाते हैं, साथ ही साथ एक टॉपिक पर हम बात करते हैं और साथ ही साथ गीत संगीत का जो पिटारा है वो भी खुलता रहता है। तो चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों का, हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे धर्मशाला का मौसम। इस समय की बात करें श्रोताओं, तो 6:05 हुए हैं और इस समय धर्मशाला का मौसम जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। और अगर श्रोताओं इसी के साथ हम अब बिल्कुल नमी की बात भी जो है वो अगर की जाए श्रोताओं, तो इस समय जो है वो धर्मशाला की जो ह्यूमिडिटी है, जिसको अंग्रेज़ी में नमी कहते हैं, तो वो है इस समय देखनी पड़ेगी। तो चलिए, ज़रूर देखनी पड़ेगी कि कितनी नमी जो है वो बता रहे हैं। इस समय की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो 53% जो है वो नमी है। और ये ठीक है, ये सही है, 19 डिग्री के आसपास मौसम जो है वो रह रहा है इस समय। तो बहुत सारे गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं, बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको यूं ही बने रहना है, यूं ही जुड़े रहना है और कार्यक्रम का आनंद लेते रहना है। चलिए चलते हैं श्रोताओं और आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस गीत के साथ।

वाह जी वाह, बहुत प्यारा सा ये गीत था श्रोताओं, और वाकई में इस गीत को सुन के ना बहुत कुछ याद भी आ जाता है अखियों के झरोकों से। बहुत प्यारी सी आवाज़ में ये गीत जो है वो हम सभी ने सुना श्रोताओं। और आइए जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम सभी, और बहुत सारी जानकारियाँ जो है श्रोताओं वो हमने आप तक पहुँचानी है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और कल है मदर्स डे, जी बिल्कुल श्रोताओं, कल है मदर्स डे। तो चलिए, कल तो हमारा जो है वो छुट्टी रहेगा तो मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज ही। और मुझे ये लगता है कि हर दिन जो है वो माँ का होता है, ऐसा कोई दिन नहीं है जो माँ के बिना होता है ना जी, हर दिन माँ का होता है। लेकिन फिर भी एक स्पेशल डे जो है वो मनाया जाता है श्रोताओं। तो कल 10 मई को जो है वो मदर्स डे मनाया जाएगा। और आज के विचार की ओर चलते हैं श्रोताओं, और लेके चलते हैं कहते हैं वो रहिए जो आप हैं, वो रहिए जो आप हैं, और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। वाकई में श्रोताओं हर रिश्तों में ऐसा है, कमज़ोर जो है वो कोई नहीं होता है श्रोताओं, बस वक्त वक्त की बात है, बारी जो है वो सबकी आती है। शुरुआत में ये एक पिक्चर देख पा रहा हूँ जिसमें एक चिड़िया जो है वो चींटी को अपनी चोंच में उठाकर जो है वो घूम रही है या उसे खा रही है, ये शुरुआती दौर है। और अंत में वही चिड़िया जो है वो मर चुकी है और उसके आसपास चींटियाँ उसको जो है वो खा रही है। तो कमज़ोर कोई नहीं होता है, बस वक्त वक्त की बात जो है वो होती है, और वक्त जो है वो सबका आता है श्रोताओं। ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, परंतु हम जीना ही जो है श्रोताओं वो देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक तो फिर लौटने का जो है वो वक्त हो जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब पे आप जितना दूर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे, उतना आप तंदुरुस्त रहेंगे। सो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी ज़रूर बनाएं कि ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, है ना। जितनी दूरी होगी उतना आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को बीते हुए लम्हे।

बहुत ही प्यारे संगीत आप सभी ने सुना श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर बीते हुए लम्हों की कसक गीत के बोल थे। निकाह फिल्म से लिया गया ये गीत था और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये बेहतरीन सा गीत आप सभी ने जो है वो अपने वीडियो सेट पर सुना श्रोताओं। आइए जी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अब आपको जानकारियों का पिटारा जो है वो खोलते हैं और आपको सुनाते हैं जानकारियां श्रोतों। सोमवार से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल मुकाबलों का आगाज होने जा रहा है श्रोतों। देश विदेश के खिलाड़ी, अधिकारी और हजारों क्रिकेट प्रेमी जो है वो धर्मशाला पहुंच रहे हैं, लेकिन मैचों से पहले शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल, कई सवाल मैं कहना चाहूँगा, उठने लगे हैं। खासकर स्टेडियम और टीमों के जैसे ही उनका यहाँ पर आना हुआ, उनसे जुड़े मुख्य मार्गों पर कई स्थानों पर जो है वो डस्टबिनों के बाहर फैली गंदगी स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल रही है। धर्मशाला से दाढ़ी कंडी मार्ग और स्टेडियम की ओर से जाने वाले अन्य प्रमुख रास्तों पर जगह जगह अंडरग्राउंड डस्टबिनों के बाहर कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर लोगों द्वारा खुले में कचरा फेंके जाने से बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आईपीएल जैसे बड़े आयोजन के दौरान यही स्थिति शहर की छवि को प्रभावित कर रही है। नगर निगम की ओर से शहर के 17 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। घरों, दुकानों, होटलों और संस्थानों से नियमित रूप से कचरा संग्रहण भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग सार्वजनिक स्थानों और डस्टबिनों के आसपास कूड़ा फेंक रहे हैं। शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के बावजूद गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है और मुझे लगता है कि अब जो है वो इस पर और भी ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जाएगा, इस मुद्दे पर और भी ज़्यादा सख्त ध्यान जो है वो अब दिया जाएगा श्रोताओं, और सीसीटीवी कैमरे को जो है वो अब खंगोला जाएगा, वहाँ पे तराशा जाएगा कि कौन शख्स हैं ऐसे जो आसपास डस्टबिन के आसपास या बाहर जो है वो कूड़ा फेंक रहे हैं। और ये देखिए, इंडिया कहते हैं, हर कोई ये कहता है ना कि ये इंडिया है, इंडिया में ऐसा होता है। भाई साहब, हम लोग ही तो रह रहे हैं, हम लोग, देखिए छोटी सी बात है, मोदी जी ने मैं किसी नेता का नाम इसलिए ले रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने ये शुरुआत की थी कि स्वच्छ भारत है ना, स्वच्छ भारत अभियान, उन्होंने ये अभियान जो है वो छेड़ा था, तो चलिए ये अच्छी ही बात है ना। तो व्यक्तिगत रूप से हम देखें तो ये बहुत बेहतरीन बात है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है कि कूड़ा जो है वो हम इस तरह से ना फैलाएं और डस्टबिन के अंदर जो है वो इस तरह से डस्टबिन के बाहर जो है वो इस तरह से कूड़ा हम ना फैलाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है श्रोतों। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा रेडी गुंजन की गूंज के साथ, डफली वाले डफली बजा। सरगम मूवी से लिया गया गीत है श्रोतों, लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में प्यारा सा गीत आप सभी के वीडियो सेट में ये रहा।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz हर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। 6:30 हो गए हैं श्रोताओं, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी से मिलते हैं वापस। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

स्वागत है एक बार फिर से एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। तो आइए चलते हैं श्रोताओं और अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। टूटी सड़कें और अंधेरे रास्ते बिगाड़ रहे हैं इस समय स्मार्ट सिटी की तस्वीर श्रोताओं। स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान बनाना बड़ा मुश्किल है धर्मशाला का, ऐसा कहा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में जो है वो पहचान बना चुके ज़िला मुख्यालय धर्मशाला में अगले 3 दिनों में शुरू होने वाले आईपीएल मुकाबलों से पहले शहर की जो मूलभूत सुविधाओं की हालत है वो फिर सवाल जो है वो मूलभूत जो सुविधाएं वो फिर से एक बार सवालों के घेरे में आ गई हैं श्रोताओं। 11 मई से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शुरू होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर जहां देश विदेश के खिलाड़ी और बड़ी संख्या में दर्शक धर्मशाला पहुंचने वाले हैं, वहीं शहर के फुटपाथों की हालत स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी हुई है। पंजाब किंग्स सहित अन्य टीमों और विदेशी खिलाड़ियों का धर्मशाला पहुंचना भी शुरू हो चुका है, इवन की पहुंच भी चुके हैं सभी, लेकिन शहर के कई मुख्य मार्गों पर टूटे फुटपाथ, खुले नाले और कभी कभी धोखा देने वाली ये स्ट्रीट लाइटें अब भी जस की तस दिखाई दे रही हैं। अस्पताल से कचहरी चौक, कचहरी से शिक्षा बोर्ड, कॉलेज रोड और स्टेडियम की ओर जाने वाले कई रास्तों पर फुटपाथ जगह जगह से टूटे पड़े हैं श्रोताओं। कई स्थानों पर नालियों के ढक्कन गायब हैं। रात के समय होने वाले आईपीएल मुकाबलों के दौरान ये समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद हजारों दर्शक पैदल अपने वाहनों तक लौटेंगे। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि स्टेडियम के आसपास और मुख्य मार्ग पर पार्किंग की सीमित व्यवस्था के कारण कई दर्शकों को दूर दूर तक वाहन खड़े करने पड़ेंगे। ऐसे में उन्हें टूटी और उखड़ी हुई फुटपाथों से होकर गुजरना पड़ेगा। खराब स्ट्रीट लाइट के कारण रात में कई स्थानों पर अंधेरा रहता है, जिससे गिरने का और हादसा होने का जो है वो खतरा बना रहता है श्रोताओं। पर्यटकों व क्रिकेट प्रेमियों के सामने शहर की जो तस्वीर पेश हो सकती है वो कभी वो लग रहा है कि थोड़ी सी ख़राब जो है वो शहर की, हमारे धर्मशाला शहर की तस्वीर ख़राब पेश हो सकती है श्रोताओं। नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि आईपीएल मुकाबलों से पहले अगर शहर के फुटपाथों की तत्काल मरम्मत करवाई जाती, खुले नालों को ढका जाता और ख़राब स्ट्रीट लाइट को ठीक करवा दिया जाता तो स्मार्ट सिटी के ऊपर दाग नहीं लगता। जी बिल्कुल श्रोताओं, तो चलिए कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि आपका दिल भी जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ कहता होगा कभी न कभी किसी न किसी के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सभी, होप सो अच्छे होंगे। चलिए जानकारियों का पिटारा जो है वो खोलते चलते हैं। श्रोताओं, 8 करोड़ का रेलवे स्टेशन किस काम का? कांगड़ा घाटी में रेल सेवा बहाल ना होने पर जनता में आक्रोश, केंद्र पर अनदेखी का आरोप। जी बिल्कुल, कांगड़ा घाटी रेल सेवा की बहाली को लेकर क्षेत्र में एक बार फिर से जनक्रोश तेज हो गया है। श्रोताओं, सामाजिक संगठन व्यापार मंडलों, युवाओं और आम लोगों ने केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय पर कांगड़ा घाटी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 वर्ष से बंद पड़ी रेल सेवा आज तक शुरू नहीं हो पाई। क्षेत्रवासियों ने बैजनाथ पपरोड़ा रेलवे स्टेशन पर हुए करोड़ों रुपए के खर्चे पर भी सवाल जो हैं वो उठाए हैं। उनका कहना है कि लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन की आधुनिकीकरण किया गया है, भवनों का निर्माण हुआ है और सुविधाएं बढ़ाई गई है, लेकिन जब ट्रेन ही नहीं चल रही तो यह विकास कार्य जनता के किसी काम का नहीं है। लोगों ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या ये सब केवल उद्घाटन और फोटो खिंचवाने के लिए किया गया था? चक्की पुल से लेकर ट्रैक और स्टेशन तक का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। लोगों का कहना है कि 1 वर्ष

समय में वेल राज्य मंत्री के दौरे के बाद सेवा को रोक दिया गया। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि पठानकोट में रेलवे फाटक पर लगाने वाले लगभग 5 मिनट के जाम को आधार बनाकर पूरी कांगड़ा घाटी रेल सेवा को रोक देना ये सही बात नहीं है। चलिए श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और आइए, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं, हम धौलाधार पर्वत में, धौलाधार पर्वत की गोद में हम रहते हैं श्रोताओं, पहाड़ों की गोद में हम रहते हैं, तो ये प्यारा संगीत आप सभी पहाड़ियों के लिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ जो है वो सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, एक बार फिर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए श्रोताओं, धीरे धीरे अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की और समय पर पहचाने तनाव के लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है श्रोताओं, तनाव को हम आम बात मानकर जो है वो टाल देते हैं, कभी कभी ये भी नहीं समझ पाते कि जो स्वास्थ्य या व्यवहार से जुड़ी समस्याएं हम झेल रहे हैं उसका कारण स्ट्रेस है। इतना ही नहीं, तनाव के लक्षणों को ना समझने से इससे बाहर आने की राह भी नहीं मिल पाती है, साथ ही तनाव के प्रबंधन की भी कोई दिशा नहीं सूझती है श्रोताओं। कई शारीरिक, मानसिक, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी होती हैं श्रोताओं। कुछ एक मामलों में सुसाइड की आत्मघाती कदम ले जाता है, सुसाइड की ओर जो है वो स्ट्रेस हमें ले जाता है। इसलिए समझना जरूरी है कि तनाव के लक्षण मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक बदलावों के रूप में कई तरीके से सामने आ सकते हैं। ऐसे में हर उम्र के लोग और उनको अपनों के तनाव के लक्षणों को समझना ज़रूरी है। तनाव के लक्षण समझने ही इसे समस्या को मैनेज करने या इससे बाहर लाने वाला कदम जो है, पहला कदम जो है वो कहा जाता है। शारीरिक बदलावों से जुड़े लक्षण श्रोतों, तनाव को आमतौर पर मन और दिमाग से जुड़ी समस्याएं माना जाता है। ऐसे में इसकी वजह से आने वाले शारीरिक बदलावों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, लेकिन शरीर पर देखने वाले लक्षण भी तनाव के कसते घेरे को जाहिर करते हैं श्रोतों, जिनमें प्रमुख संकेत हैं थकान, सिर दर्द, गर्दन और कंधे की जकड़न महसूस करना। जी बिल्कुल श्रोताओं, नींद ना आना, इस तरह के ये जो है वो कुछ एक लक्षण है। और भी बहुत सारी बातें जो है वो ज़रूर जानेंगे। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपसे ठीक एक मिनट बाद यानी कि पूरे 7 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: बनके जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनो एक बार फिर से आप सभी का अंतराल के बाद बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी ने इस समय ट्यून किया है एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आपका अपना रेडियो गुंजन है श्रोताओं, और मैं हूँ आपका अपना नाचीज सचिन कपूर। पुनः स्वागतम सभी सुनने वालों का। हम बात कर रहे थे श्रोताओं तनाव के लक्षणों की, तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि तनाव के कारण जो है वो कुछ लोगों का वजन कम हो जाता है तो कई लोगों में मोटापा बढ़ने लगता है। शरीर का भीतरी और बाहरी सिस्टम इसके दुष्प्रभाव झेलता है, वह लक्षण भी दिखाता है। तनाव के कारण कई लोगों में तेज हृदय गति, पाचन समस्याएं व चक्कर आना, ऐसी स्थिति जो है वो बन जाती है। बच्चे, बुजुर्ग या युवा स्ट्रेस के चलते इम्यूनिटी कम होने से बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे में शरीर में दिखने वाले इन लक्षणों के माध्यम से भी तनाव को समझना ज़रूरी है ताकि समय पर उपचार लिया जा सके। मानसिक मोर्चे पर स्ट्रेस से जुड़े मतलब आप ये समझिए कि बदलती मन स्थिति के संकेत भी होते हैं। मानसिक सोच, मतलब आप किस तरह की सोच रख रहे हैं, क्या स्ट्रेस ले रहे हैं, कितना अधिक स्ट्रेस जो है वो ले रहे हैं, कितना तनाव ग्रस्त इंसान के विचार हैं, भावनाएं हैं, और कार्य करने का रंग ढंग ही बदल जाता है स्ट्रेस के कारण। श्रोताओं, चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ जाता है ना जी, अकेलापन जो है वो इंसान फील करने लगता है। भावनात्मक तरीके से अगर हम सोचें श्रोताओं, तो स्पष्ट दिखने लगता है कि इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस में है, क्रोध आ जाता है ना, बहुत सी बेचैनी जो है वो रहती है, बेचैनी से घिरा रहता है इंसान। कई लोग बेवजह डरने लगते हैं, कई निर्णय लेने और काम करने पर फोकस करने में कठिनाई आती है कई लोगों को, है ना, हताश होते हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो हर किसी से दूरी बनाने लगते हैं श्रोताओं, जो स्ट्रेस में रहते हैं। अपनों से भी संवाद कम हो जाता है उनका। इन लक्षणों पर अपने हो या पराए सभी को ध्यान देना चाहिए। बदलती मन स्थिति समय पर समझी जाए तो तनाव जो है वो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है श्रोताओं। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी, लेके चलते हैं आप सभी को प्यारे से, बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं हमारे पास, तो आइए लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की।

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेरी जो कि सचिन कपूर। आइए श्रोताओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी मतलब अगली इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाते हैं श्रोताओ। मनोवैज्ञानिक लक्षण भी समझे श्रोताओ। हमारे परिवेश में मनोवैज्ञानिक और मानसिक लक्षणों को भी को एक ही समझ लिया जाता है। ये बात एक बार फिर से सुने कि हमारे परिवेश में मनोवैज्ञानिक और मानसिक लक्षणों को एक ही समझ लिया जाता है। असल में साइकोलॉजिकल लक्षण मन व्यवहार और भावनाओं के साइंटिफिक अध्ययन और ट्रीटमेंट से संबंधित हैं, जबकि मानसिक लक्षणों में दिमाग की सहज स्थिति के साथ ही इंसान के विचारों भावनाओं और आम जीवन से जुड़ी गतिविधियों को समझना शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य मस्तिष्क की सामान्य स्थिति से जुड़े होने के चलते इसका संबंध जो है वो टेम्परेरी इमोशंस से होता है श्रोताओं। खुशी, दुख, तनाव, गुस्सा आदि हमारी तत्कालिक भावनाएं हैं। लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना रहे तो साइकोलॉजिकल समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्रोनिक स्ट्रेस की स्थितियों में लोग नशे की लत के भी शिकार हो जाते हैं श्रोताओं। इसलिए जब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लक्षण सही हो और तनाव की समस्या को ठीक से समझना मुश्किल हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी है। सामाजिक पारिवारिक जीवन में परिवर्तन श्रोताओं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तनाव के लक्षण इंसान के सामाजिक पारिवारिक जीवन में भी दिखते हैं। स्ट्रेस के शिकार लोगों का अपने सगे संबंधियों से टकराव होने लगता है। संवाद की कमी और शिकायतें बढ़ जाती हैं श्रोताओं। भावनात्मक दूरियां आने लगती हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति जिम्मेदारियों से बचते हैं, वह और ही चीज़ों में जो है श्रोताओं घिरे दिखते रहते हैं। किसी आयोजन का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में शरीर से लेकर सामाजिक जीवन तक तनाव से जुड़े लक्षणों को समझना जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है श्रोताओं। तो होप सो आप सभी जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और ज़्यादा तनाव जो है वो अपने अंदर आने नहीं देंगे। खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जब मौका मिला तब इन्जॉय किया करेंगे, है ना जी। इसी तरह से हम तनाव से जो है श्रोताओं वो बच सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और ज़िंदगी जो है ना श्रोताओं वो प्यार का गीत है, है ना, वाकई में है ही ना। तो आइए इसी बीच में आपको सुनाते हैं हम भी ये प्यारा सा गीत आप सभी के वीडियो सेट पर।

शोध एंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला। आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। तो चलिए जी श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जिंदगी वाकई में ही प्यार का गीत है। अगर आप उसको प्यार से देखते हैं, प्यार से खंगोलते हैं तो है ना जी, वाकई में ही प्यार का सुकून तो है प्यार में। तो चलिए फिलहाल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। प्रदेश में ओलावृष्टि ने फिर से परेशान किए बागवान। जी बिल्कुल श्रोताओं, अभी बल्कि हमारे धर्मशाला में ठीक था लेकिन बाकी जगह जो है वो हो रही है श्रोताओं। हिमाचल प्रदेश में मौसम की अटकलियां लगातार जो है वो चल रही हैं। राज्य में जो है वो कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से तेज़ बारिश जो है वो हो रही है अभी भी, वहीं कुछ एक भागों में मौसम साफ जो है वो बना हुआ है। जैसे आज और पिछले 2-3 दिन से जो है वो धर्मशाला में बना हुआ है साफ। वहीं राज्य के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि भी देखने को जो है वो मिल रही है, जिससे बागवानों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो रही है। इवन कि फसलों को भी भारी नुकसान जो है वो हुआ है श्रोताओं। शिमला रोड की बात करें श्रोताओं, तो इस क्षेत्र के साथ लगते और भी बहुत इस क्षेत्र में ओलावृष्टि से बागवानों के फल जो है वो बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं श्रोताओं। मौसम की बात की जाए तो 10 मई यानी कि कल जो है मौसम साफ रहने का अनुमान है। 10 मई को जो है वो मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर जो है वो मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगर मैं बात करूं श्रोताओं, तो 11, 12, 13 और 14 मई को प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 11 और 12 मई को जो है वो बिजली कड़कने की संभावना है। विभागों ने इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है श्रोताओं। 12 मई को राज्य के 5 जिलों में तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी होगी और इसके लिए अलर्ट जो है श्रोताओं वो जारी किया गया है। 11 से बारिश के आसार एक बार फिर से जो है वो देखने को मिल सकते हैं प्रदेश भर में। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं। जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। आप सभी इस समय बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। जी बिल्कुल श्रोताओं, आरजे सचिन कपूर के साथ आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। कौन सा कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोताओं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए आप सभी श्रोताओं को लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर, और गीत के बाद आप सभी को श्रोताओं लेके चलेंगे अंतराल की ओर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। तो आइए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है,
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: कैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं।
9: फिर
8: क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देखो क्या हो गया।

श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडी गुंजन धर्मशाला, और अंतराल के बाद आप सभी का मैं सचिन कपूर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए जी, अब इसके बाद आप सभी को लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहेगा रेडी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

0: शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने वेड़ी गुंजन धर्मशाला ट्यून किया है और अब वक्त हो गया है श्रोतों प्रादेशिक समाचार सुनने का।
1: प्रबंधन प्राधिकरण को क्षमता निर्माण सुदृढ़ीकरण के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि आपदा का विस्तृत अध्ययन, खतरा आकलन और तकनीकी मूल्यांकन से जुड़ी सभी राज्य स्तरीय अनुसंधान व विकास गतिविधियां विश्वविद्यालय के इसी केंद्र के माध्यम से संचालित की जाएंगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्य धारा से वंचित न रहे। वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को नई दिशा देने और सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं कल 10 मई से दोबारा बहाल होने जा रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी सोमवार 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य पंचायतों को स्थानीय शासन सेवा वितरण में सुधार करने और सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से सतत विकास की दिशा में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया करने का काम किया है। मंडी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। सोदान सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर आम जनता के साथ धोखा किया है। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिन झूठी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, वही गारंटियां आज जनता के दिलों में पीड़ा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनरों सहित हर वर्ग कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। प्रदेश में शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन नगर निगम के तहत गंज बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 वर्ष की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और इन चुनावों में सरकार की नाकामी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
2: नगर निगम के चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और सीधी बात है इसमें कि प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष की जो असफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो अपने आप में मुद्दा है। शहर में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और झूठ बोल करके कॉरपोरेशन में भी आई।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश

0: सहित प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में राज्य की सभी अदालतों में लोक अदालतें लगाई गईं। इन अदालतों में 140 बेंचों के समक्ष 1,10,260 मामले लाए गए, जिनमें से 65,793 मामलों का निपटारा किया गया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महासु आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनी आज शुरू हुई। 14 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने कैनवास पर रंगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक मुद्दों को उकेरा है, जो सराहनीय है। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगी।
1: कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है, और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है, प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है, तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी, तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा सबको मान्य होगा।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल 10 मई को घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते आज पालमपुर में स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल से जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिमला में 2 दिवसीय मंथन मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तकनीक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से MSME क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस आयोजन में देश भर से छोटे उद्यमी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। MSME व स्टार्टअप्स कमेटी के चेयरमैन ज्ञानचंद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें।
2: सरकार की जो योजनाएं हैं उनको MSME को बताना, क्या ग्रांट्स हैं, क्या सब्सिडी हैं, कैसे लोन पा सकते हैं, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्लायंस कैसे करना है, सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, इन सब चीजों को लेकर के वो DFO ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं MSME के लिए अपने क्षेत्रों में। तो पूरे देश के 55 DFO यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
0: भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी कार्यालय के अनुसार धर्मशाला नगर निगम में 5 जबकि नाहन नगर परिषद में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 1 उम्मीदवार की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम के प्रभारी हरिकृष्ण हेमराल ने आज अन्य सदस्यों के साथ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वॉर रूम का मुख्य कार्य फील्ड में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अपडेट करना, दैनिक आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट लेना और पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उन तक पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और होप सो आप सभी को गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम पसंद आया होगा और स्ट्रेस फ्री रहना जो है वो ज़रूर सीखिए श्रोताओं, और माँ बाप की सेवा करते रहिए, पेरेंट की सेवा करते रहिए, माता की सेवा हमेशा करते रहिए और बड़ों बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करे श्रोताओं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यानी सचिन कपूर लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय हिमाचल।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देखिए क्या हो गया।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी? फिर वो ड्रेस की फिटिंग तो ठीक थी?
2: हाँ वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी टाइट है।
1: अच्छा, तो अल्टर कराने आए हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो मैं आते जाते कभी भी करा लूंगी।
1: ठीक,
2: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
1: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको?
2: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये तो बस दिखा रहे थे, ये एक और स्टाइल है।
2: थोड़ा सिंपल दिखाइए।
1: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
2: चुन्नी के लिए।
1: ये अपनी चुन्नी?
2: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
1: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
3: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी।
1: अच्छा, 12 साल की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
3: नहीं, क्यों?
1: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
3: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
1: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
4: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है।
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: किसी ने क्या खूब कहा कि कृष्ण के जीवन को देखिए, बहुत कुछ छूटा। पहले जन्म लेते माता पिता का साथ छूट गया, इसके बाद यशोदा माँ, नंद बाबा, मथुरा, गोकुल, सखा, संबंधी, यहाँ तक कि राधा का साथ भी छूट गया। लेकिन कुछ नहीं छूटा तो वो था श्री कृष्ण के चेहरे के मुस्कान। कृष्ण भगवान जो है ना, वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण भगवान सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कठिनाई या कोई भी परिस्थिति हो, चेहरे के मुस्कुराहट और धैर्य कभी नहीं छूटना चाहिए।
8: ऐसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे।
9: oh, no.
8: मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ, देखो क्या हो गया।

0: को इस खत में क्या लिखूं।
1: छोड़ मेरी साड़ी,
2: छोड़ मेरा खत।
1: मैं कहती हूँ छोड़ मेरी साड़ी, छोड़ मेरी साड़ी।
2: पहले मेरा खत वापस करो।
1: क्यों
2: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र पढ़ती हो?
1: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो?

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।